0: म्यूजिक, लेकिन इसका शुरुआत उससे पहले ओपन ईयर से पहले हुआ, तो छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके लिए हम आपके लिए पेश कर रहे हैं रमेश के साथ, जो टापे वाले के विषय में थोड़े म्यूजिक के विषय में थोड़े कुछ बताएंगे। उसके बाद आपके लिए एक विशेष संग्रह वन आवर ऑफ टांगे वाला म्यूजिक, यानी कि टप्पू और टापू के रिदम। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बाय रमेश।
1: सर्च के मुताबिक घोड़े की टापों के रिदम को ओपन ईयर से पहले कई संगीतकारों ने ढाला है, जिनमें प्रमुख नाम रोशन, एस डी बर्मन और नौशाद साहब के हैं। लेकिन इन सब के पहले भी 1930 और 40 के दशक के एक संगीतकार थे पंकज मलिक। उन्होंने सन 1941 में आई फिल्म डॉक्टर के गीतों के लिए संगीत तैयार किया था। 1951 में नितिन बोस की फिल्म आई दीदार, जिसका यह आइकॉनिक गाना शायद ही कोई भुला सके। फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने और गाने लिखे थे शकील बदायूनी ने। आवाज थी शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की। आज हंसे कल रुला न देना, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, नरगिस और निम्मी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसमें घोड़े की टापों वाले धुन में गाए इस गाने ने चार चांद लगा दिया था। अगले साल यानी 1952 में संगीतकार नौशाद ने इस धुन को थोड़ा और संवारा महबूब खान की महत्वाकांक्षी फिल्म आन के लिए। आवाज थी उनके चहेते गायक मोहम्मद रफी की। दिल में छुपा के प्यार का, इस पहली रंगीन फिल्म के इस गाने को फिल्माया गया था दिलीप कुमार और नादिरा पर। यह गीत फिल्म के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर हुआ था। और फिर इसके बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1955 में शुरू हुआ ओपी नैयर के तांगा म्यूजिक का सिलसिला।
0: जी हाँ, ओपी नैयर के सिलसिला टांगे वाला म्यूजिक आज के प्रोग्राम में अभी से लेकर करीबन 11 बजे तक। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, चलो सुनते हैं नौशाद। ही स्टार्टेड 1952 विद फिल्म आन, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। पर्दे पर दिलीप कुमार के साथ निम्मी और नदीरा, याद है नदीरा, जिस एंग्लो इंडियन एक्ट्रेस। गीतकार शाकिल वादियोनी, यह है संगीत के जानकार और यह है यादों का सफर। और आज सफर आपके साथ करेंगे टांगे वाली म्यूजिक के साथ।

1952 की फिल्म शायद जिससे शुरुआत आने वाले म्यूजिक का रियल बिगिनिंग हुआ। 1952 की फिल्म आन और संगीतकार थे नौशाद। गीतकार शाकिल वादियोनी, आवाज मोहम्मद रफी, पर्दे पर दिलीप कुमार, निम्मी और नादिरा। लेकिन टांगे वाली म्यूजिक यानी कि टापू वाली म्यूजिक स्टार्टेड इन एनेस्ट विथ ओपी नैयर, द सिग्नेचर रिदम ऑफ ओपी नैयर। साल 1955, फिल्म का नाम बाप रे बाप। किशोर कुमार पर्दे पर और गीत को गाया भी किशोर कुमार ने। ओपी नैयर संगीतकार और गीतकार जान निसार अख्तर, अशोक कुमार पर्दे पर।

साल 1958 फिल्म का नाम हॉरर ब्रिज, अशोक कुमार और मधुबाला की फिल्म, गीतकार हजरत जयपुरी और संगीतकार ओपी नैयर, स्पेशल सेगमेंट ऑफ तांगे वाला म्यूजिक। तो चलो अब सुनवाते हैं और आपको ले चलते हैं साल 1963, फिर वही दिल आया हूं, याद है जोई मुखर्जी और आशा पारक। ओपिनियर संगीतकार मजरू सुल्तानपुरी की गीतकार इस बार 1963 के फिल्म अनदा, टापू वाला यानी कि टांगे वाला। ऑन द स्क्रीन द विजन, रिक्शा बीइंग पुल्ड बाय अ हॉर्स, द सिंगर्स इन द बैक सीट, मधुबाला, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, शम्मी कपूर, जो भी हो, स्पेशल सेगमेंट ऑफ तांगे वाला म्यूजिक।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: 1963 के फिल्म फिर वही दिल लाया हूं, आशा पारे के साथ जोई मुखर्जी, ओपिनियर संगीतकार और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आवाज मोहम्मद रफी, संगीत की झनकार पर मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। और आज सुबह यादों के सफर के अंतर्गत आपके लिए हम पेश कर रहे हैं तांगे वाली म्यूजिक। जी हाँ, स्पेशल सेगमेंट ऑफ तांगे वाले म्यूजिक विच वॉज डोमिनेटेड बाय ओपी नैयर ऑफ कोर्स, बट इसका शुरुआत शायद 1952 में फिल्म आन से हुआ था। नौशाद संगीतकार था, दिलीप कुमार और निम्मी के फिल्म। फिलहाल अब चलो उसको जारी रखते हुए इस बार आपके लिए हम पेश कर रहे हैं जरा हौले हौले, वन ऑफ दोज फेमस नंबर्स बाय आशा भोसले। ओपी नैयर संगीतकार और गीतकार SH बिहारी, 1966 के फिल्म सावन की घटा, मनोज कुमार पर्दे पर, साथ में शर्मिला टैगोर, और ये है 17 आवर और मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान, और ये है अनदा तांगे वाला म्यूजिक।

और अब चला एक बार आपके लिए एक बार फिर टांगे म्यूजिक, लेकिन ओपिनियर नहीं, इसमें इसको म्यूजिक दिया है इस बार रोशन ने। और ये भी डिफरेंस ये है, एवरी टांगे वाली म्यूजिक डिड नॉट हैव रोमांटिक सॉन्ग्स। जी हाँ, इस बार दादी, फिल्म के नाम दादी, दादी माँ, पर्दे पर दिलीप कुमार, रीना रॉय, अशोक कुमार, तनुजा और मुमताज, अनदर वर्ड सिंह, मन्ना डे और महेंद्र कपूर, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। अतंगे वाले म्यूजिक विद द डिफरेंस, दादी माँ फिल्म 1966 के फिल्म दादी माँ।

गीतमाला के पहले नगमा भी आप सुन रहे थे फिल्म जाल से निकाली हुई आनंद राज आनंद के संगीत पर गीतकार समीर आवाज उदित नारायण फिल्म जाल और अब आपको याद होगा माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की फिल्म राजा से निकाली हुई उदित नारायण के साथ अलका याग्निक गीतमाला की दूसरी नगमा यह है संगीत की जानकार और आपके साथ फिरोज खान साथ दीजिए ना।

गीत माला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे फिल्म राजे से निकाली हुई माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की फिल्म उदित नारायण और अलका याग्निक। एक बार फिर फिल्म राजे से निकाली हुई आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत माला के अंतर्गत माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की फिल्म राजा, उदित नारायण और एक बार फिर उसके साथ अलका याग्निक। यह है संगीत की झनकार पर हर रविवार को आपने हमारा साथ देते हैं, तो हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को ही जी चाहता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, और ऐसे गीत में शामिल है ये गीत राजा।

0: एक माला कंदर के भी आप सुन रहे थे फिल्म राजा से निकाली हुई उदित नारायण और अलका याग्निक।
1: ये है संगीत की झनकार 17 ओवन ब्रिस्बेन और आप सुन रहे हैं गीत माला फिरोज खान के साथ।
2: संगीत संसार में हर सप्ते नई एल्बम्स जारी होते रहते हैं, ऐसे में क्या नया और क्या सुनने के काबिल है इसकी पकड़ रखना जरा मुश्किल है ना। हर एल्बम को सुनने के बाद हम चुन चुन कर बेहतरीन गाने ही बजाते हैं।
0: जी हाँ, चुन चुन कर बेहतरीन ही गाने बजाते हैं गीतमाला में। गीतमाला में ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पास्ट हिट्स, और जिसको जारी रखते हुए इस बार हम आपके लिए पेश करते हैं फिल्म गुनाह से निकाली हुई। आनंद राज आनंद संगीतकार और गीतकार आनंद बख्शी, रूप कुमार राठौर के साथ सबरी ब्रदर्स। जी हाँ, सबरी ब्रदर्स बहुत ही खूबी से इस गाने को अदा किया है। संगीत की जानकारी पर गीत माला के अंतर्गत और आपका साथ।

Selam, günah seni kalibri. रूप कुमार राठौर के साथ सबरी ब्रदर्स आनंद राज आनंद के संगीत पर और गीतकार आनंद बख्शी. और अब आपको याद होगा अजय देवगन, अक्षय खन्ना और उर्मिला मातंडकर की फिल्म दीवानगी. दीवानगी से निकाली हुई उदित नारायण के साथ कविता कृष्णमूर्ति, स्माइल दरबार संगीतकार और सलीम बिनोरी गीत.

टू ब्यूटिफुल लाइन बाय सलीम बिनोरी गीतकार संगीतकार इस्माइल दरबार फिल्म दीवानगी से निकाली हुई अजय देवगन अक्षय कुमार की अक्षय खन्ना की फिल्म दीवानगी उदित नारायण के साथ कविता कृष्णमूर्ति यह है संगीत की शंकर और आप सुनते हैं गीतमाला ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है हम है प्यार में ये एक्चुअली फिल्म का नाम है ये हम है प्यार में निषाद वाइदैया और युगेश और सोनू निगम साथ में किशोर मथुराऊ अनयूजुअल नेम बट वेरी यूजुअल सॉन्ग संगीत की झंकार पर गीत माला के

0: फिल्म हम हैं प्यार में सोनू निगम के साथ योगेश, यह है रेडियो रिजवानी 1701 और यह है संगीत की झनका।
1: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Rizwani.
2: Hi, this is Feroz Khan and presenting on Radio Rizwani.
3: चौबीसों घंटा आपका साथ देता है Radio Rizwani, the Indian rhythm from down under. Radio Rizwani.
4: गाने तो गाने होते हैं, चाहे नए हो या पुराने, मगर कुछ ऐसे गीत होते हैं जो दिलों को छू लेते हैं। ऐसे ही नगमे हम शामिल करते हैं गीत माला में।

गीत माला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे फिल्म हमारा दिल आपके पास है, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म हमारा दिल आपके पास है। संजीव दर्शन, संगीतकार गीतकार जावेद अख्तर। और अब शामिल करते हैं फिल्म तुम बिन, निखिल विनय संगीतकार, गीतकार फयाज अनवर। संगीत की जानकार पर आपका साथ फिरोज खान।

0: निखिल विनय, संगीतकार गीतकार फयाज अनवर, फिल्म तुम बिन, गीतमाला के अंतर्गत संगीत की झिंकार में 1701 ब्रिस्बेन।
1: I'm Padma and you're listening to Hits of the 90s and recent past hits with your host Feroz Khan.

0: रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपके साथ फिरोज खान संगीत की जानकार, जिसमें हम पेश करते हैं द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, एंड द अदर गोल्डन ईयर ऑफ बॉलीवुड दैट्स हिट ऑफ 90s. Every Sunday morning from 10 to 12:30 p.m. Make it a date. Golden Years of Bollywood. Hits of 50s, 60s, 70s and hits of 90s.
1: Radio Sangeet ki jankar. Manoranjan, Sanskriti aur Samachar.
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Briswani.
0: Hi, this is Feroz Khan and presenting on Radio Briswani.
3: चौबीसों घंटा आपका साथ देता है रेडियो ब्रिजवानी, द इंडियन रिदम फ्रॉम डाउन अंडर. रेडियो ब्रिजवानी,
0: ये है संगीत की झनकार. 79.1 ब्रिजबन पर आपके साथ फिरोज खान. और संगीत की झनकार पर हमारे स्टूडियो में करीबन 10 मिनट बाकी हैं 12:30 बजने में. और अब आखिरी हिट्स ऑफ 90s को पेश करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 12:30 बजे से रोय सिंह और सू will be here in the studios as usual. Har sapte ki tarah 12:30 baje se lekar 5 baje tak our telephone line 3279 here on 79.1 Brisbane 3279-1701 will be open. Roy and Sue always here from 12:30 to 5 p.m. every Sunday to receive your calls, dedication, cheerio or whatever. You must call them and give a request. They're here eagerly waiting for your call. 3279-1701 is Sangeet ke baad. Aapko yaad rahe, Sue and Roy will listen to you because you listen to them.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Isvani, the Indian rhythm from down under.
3: Kabhi to rulaye, kabhi, kabhi chain de to sataye, kabhi, hume karte be khabar.
2: Radio Isvani.

जी हाँ, एक बार फिर आप सबको स्वागत करते हुए आशा करते हैं कि आज का दिन, आज रविवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s से निकाली हुई, यानी कि संगीत की जानकार का शुरुआत करते हैं, और उसके बाद आपके लिए

फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक, संगीतकार डब्बू मलिक, और अब गीतमाला में शामिल करते हैं फिल्म सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म कुमार सानू के साथ अलका याग्निक। आपने हमारा साथ देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, संगीत की झनकार को सुनने को जी चाहता है। आपका साथ है फिरोज खान 79।

0: गीतमाला की दूसरी नगमा भी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से निकाली हुई, संजय दत्त और पूजा भट्ट के फिल्म कुमार सानू के साथ अनुराधा पाडवाल, और अब माधुरी दीक्षित एट हर बेस्ट विद आमिर खान, फिल्म दिल 1990 के रिलीज, आनंद मिलाज संगीतकार, आवाज उदित नारायण, साथ में अलका याग्निक, और इस फिल्म में अनुपम खेर भी काम किया था।
1: आपने हमको चुना तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं माला से, गीत माला अनमोल नगमे, नए पुराने फिल्मों के गाने गीत माला में।

0: आमिर खान और माधुरी दीक्षित फिल्म दिल से निकाली हुई 1990 के रिलीज, आनंद मिलान संगीतकार और साथ में उदित नारायण और अलका याग्निक। संगीत की जानकार गीतमाला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर मूवी दिल।
1: I'm Padma and you're listening to Hits of the 90s and Recent Past Hits with your host Feroz Khan.
0: फिलहाल गीतमाला में शामिल करते हैं फिल्म आशिकी।

0: राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और अवतार गिल की फिल्म में दिनशार संगीतकार गीतकार समीर।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार।
2: दिल दिल से मिला कर देखो,
1: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
2: अपना तो बना कर देखो,
1: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। We present, you decide. You phone us on 327-9701. We listen to you because you listen to us.
3: संगीत के झनकार 1701 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स ऑफ 90s फिरोज खान के साथ।
0: फिलहाल गीतमाला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए पेश करते हैं फिल्म मेरे दिल के आंगन में। निखिल बने संगीतकार, रानी मलिक गीतकार, आवाज कुमार सानू।

और इसके साथ साथ हम संगीत के जानकार को यहीं पर छोड़ रहे हैं। आप याद रहे संगीत के जानकार स्टेशन पर हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान। संगीत के जानकार का शुरुआत करते हैं यादों के सफर के साथ हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत। उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। अभी थोड़ी देर में हर सप्ताह की तरह टेलीफोन लाइन 3279 विल बी ओपन। जी हाँ, 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक सू आपके लिए पेश करेंगे आपकी फरमाइश, शादी के सालगिरह के सूचनाएं, जन्मदिन के सूचनाएं, जो भी हो। सू विल टेक योर कॉल्स फ्रॉम 12:30 एज यूजुअल। और एक बात और, सू किसी से बोलना मत, शी इज द मोस्ट पॉपुलर अनाउंसर हियर इन रेडियो 71 एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू। यू लिसन टू हर बिकॉज शी लिसन्स टू यू। एवरी संडे फ्रॉम 12:30 टू 2 यू कैन कॉल हर एंड डेडिकेट योर सॉन्ग्स। So stand by 3279-1701. In the meantime, your host Firoz Khan with Sangeet Ki Jankar will see you next Sunday at 10 o'clock. And that is a promise.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: Good afternoon and welcome back to Radio Brizwani. Namaskar. Ram Ram, Kim Cho, Sasikal, Salam, aur Bula Kehte Hue Ek Baar Phir Rohit Singh Aap Sabhi Ka Hardik Swagat Karna Chahega Aaj Ka Karyakram Mein. ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर. मैं हूँ रोहित सिंह. ठीक दो घंटे के लिए खूब सा कार्यक्रम शाम का सफरनामा कार्यक्रम आप सभी के साथ में होकर पेश करेंगे. आपने अपना रेडियो अभी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर. याद कीजिएगा रोहित सिंह का साथ है अभी से लेकर ढाई बजे तक, दो घंटा का खूब सा कार्यक्रम सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर लाइव हम आपके लिए पेश कर रहे हैं.
1: हर काम के साथ होती है
0: इस दिन में हमारी आवाज जहां तक पहुंच रहा है आप सभी को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर रेडियो ब्रिजवानी पर. लाइव कार्यक्रम स्टूडियो से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं. दो घंटे के लिए जुड़ जाएगा हमारे साथ रेडियो ब्रिजवानी पर 3279-1701 डायरेक्ट स्टूडियो लाइन. खूबसूरत से दिन है दोस्त साथियों. तापमान यानी टेम्परेचर अभी एट द मोमेंट मेरे ख्याल से 30 डिग्रीज है इधर सिमर पार्क की ओर. अगर आप बेलमोंट कैरिंडेल इत्यादि वहां पर रहते हैं तो 26 डिग्रीज है मेरे ख्याल से. बहुत गर्मी है दोस्त साथियों. बहुत खूब से बहुत पानी पीजिएगा आप अगर हो सके, और धूप में मत निकलिएगा अगर हो सके. शायद आप भोजन कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप हैं हमारे साथ हो जाएगा दो घंटे के लिए शाम का सफर में. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को. माता रानी की कृपा, माता रानी के आशीर्वाद आप सभी पर रहे, ये हमारी सभी की कामना है. मेरे ब्रिजवानी की ओर से नवरात्रि की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे परिवार की भी ओर से नवरात्रि पर आप सभी को ये शुभकामनाएं. 9 दिन के लिए भगवान आपके घर आए और आप शायद व्यस्त होंगे अपने पूजा पाठ में. नवरात्रि पर आधारित कुछ भजन भी हम आपके लिए आज पेश करेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर. साथ दीजिएगा दो घंटे के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह के साथ. थोड़ी देर में हम फिर से आपसे

और दूसरा भी अगर आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। याद कीजिएगा अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर।

जी हाँ दोस्तों साथियों, बहुत ही खूबसूरत गीत पेश कर रहे थे, भजन है नवरात्रि पर आधारित। चलते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में, सुनते हैं खूबसूरत से एक और एक भजन, रोहित सिंह के साथ है रेडियो।

और दूसरा दिया गीतकार रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवाणी पर सुन रहे हैं। चलते हैं एक या दो भजन और पेश करते हैं और फिर कार्यक्रम का रुख हम आपके लिए बदलते हैं।

दो साथ याद कीजिएगा, हम आपके लिए कुछ भजन पेश कर रहे हैं, एक और एक भजन, फिर इसके बाद हम कार्यक्रम का रुख आप सभी के लिए बदलते हैं। खूबसूरत से गीत, खूबसूरत से कार्यक्रम रोयसी के साथ रेडियो बिजवानी पर ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक, साथ दीजिएगा।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street Wollongabba में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
7: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एशकोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कंपटीशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेस और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ टू किड्स अंडर 16 ईयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026, Saturday 24th October 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मोर्टन बे।

जद साथी रोहित के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है। चलते कुछ खूबसूरत गीत हम आपके लिए पेश करते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। साथ दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक।

इस गीत में याद करना चाहते हैं श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप को। आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों साथियों, बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सभी सुन रहे थे और कार्यक्रम को आगे और बढ़ाते हुए इस गीत में एक बार फिर हम याद करते हैं श्रीमान श्रुति गंगा और गीता प्रसाद को।

खूबसूरत से गीत रोहित सिंह के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर स्टूडियो के घड़ी के अनुसार ठीक 2 बज चुका है। आधे घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ शाम का सफर आप सभी सुन रहे हैं। सूर्य के घड़ी के अनुसार ठीक 10 मिनट हो गया है 2:00। 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 2:30 बजे से 5 बजे तक आप सू के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए रेडियो मधुबनी पर रोहित सिंह के साथ शाम का सफर में।

जहाँ थोड़ी देर बेकार के समाप्त हो जाएगा और आप सू के साथ कार्यक्रम 2:30 बजे से 5 बजे तक सुन सकते हैं। साथ दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक रोहित सिंह का, और कार्यक्रम का मजा जरूर से लीजिएगा।

और जो स्वदेशी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सबके साथ उनके खूबसूरत कार्यक्रम सुन सकेंगे। ठीक 5 बजे तक उनके साथ दीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रुक्षत और मैं, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून, नमस्ते, शब खैर और विनाका। साथ में जाने से पहले नवरात्रि का शुभ दिन, 9 दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एवरीवन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वारी 1701 स्टूडियोज राइट नाउ। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके साथ दिया रोहित सिंह ने, चलते हैं अगला सफर पर। आपका हमारा साथ है रेडियो विश्वानी आई एम, आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 मार्च रोक्स ब्रिस्बेन से, और आज आपके साथ से लेकर ठीक 5 बजे तक साथ हमारा आपका। आज ब्रिस्बेन की वेदर के बारे में क्या कहा जाए दोस्तों, बिल्कुल ही समा ऐसा हॉट डे टू रही। इस वक्त बहुत सारे से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। इसी के साथ साथ हमें कहना चाहते हैं, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपकी जन्मदिन है, कुछ भी खुशियां आपके पास है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं रेडियो विश्वानी आई एम के साथ। आप 3279-1701 पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर एसएमएस कर सकते हैं आपके साथ सो।

क्या बात है दोस्तों, माता रानी आ गई है ना। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि नौ दीप जले, नौ फूल खिले, नित्य दिन नई बहार लाया के लिए नवरात्रि पर, इस पावन त्योहार पर।

माँ को देखकर सारी खुशियों संसार भर आया। कितना सुंदर सजा है माँ का दरबार सभी तरफ। जगह जगह पर माँ की याद किया गया है दोस्तों। माँ की कथाएं चल रही है। हैप्पी नवरात्रि।

0: अच्छा दोस्तों, आज अंबे माँ का पहला दिन है और आज हमने रेडियो विजबानी पर पहली स्वागत किया है गरबा से। पता क्यों है? ये बात तो मैंने अपने गुजराती दोस्तों से सीखा है। क्यों गरबा खेलते हैं मुझे इतना ही पता है कि जब शेरों वाली माँ, जो दुर्गा माँ छोटी थी, तो वो बहुत डांडिया खेलती थी। बहुत उनका खेलने का शौक था, इसीलिए जो गुजराती लोग हैं बस डांडिया ही खेलते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 3:45 बज चुके हैं। ये है शाम को इस पर रेडियो विस्वानी एम।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की

0: चुके हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: और जबकि हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं दोस्तों, चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं फरमाइशी प्रोग्राम, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपना ही गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ ड्राइव पर है कौन? जी हाँ, रोय सिंह, जिसको आप सुनते हैं मुझसे पहले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है रोय सिंह, हमारी शाम सफर पार्टनर है। तो चलते हैं, इस वक्त सफर पर है हमारे साथ रोय सिंह, रोनिका सिंह, उनके फैमिली। सुनना चाहते अगला नवरात्रि गीत आप सभी के लिए, अगला गीत।

0: हद सो इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे, हमारे साथ ड्राइव पर है हमारे दोस्त रॉय सिंह और रोनिका सिंह फ्रॉम कैरनडेल एंड फैमिली। आप सुन रहे हैं रेडियो बुजवानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। यही शाम का सफर।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
6: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
0: चलिए दोस्तों, अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। जो अगला गीत है, इसके लिए हमारे पास दो रिक्वेस्ट है, दो लोगों की रिक्वेस्ट है सेम सॉन्ग का। और एक गीत की फरमाइश है हमारे पास ऑकलैंड न्यूजीलैंड से निर्मा लाल की ओर से, जो मैं सुन रही है। साथ में उनकी बहन है सविता फ्रॉम ओलंगेबा स्काबरा रेड क्लिफ से, ब्रिज और शैली कुमार की ओर से। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत।

0: आपके लिए हमारे पास तीन लोगों की फरमाइश थी दोस्तों, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से हमारे साथ शामिल है हमारे प्रोग्राम से निर्मालाल, साथ में यहाँ उलंगे वसीर सविता, और साथ साथ में इस गीत की रिक्वेस्ट किया था वहाँ स्काबरा रेड क्लिफ से ब्रिजा शैली कुमार। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: दोस्तों बढ़ते हैं मेलबर्न की ओर। जी हाँ, मेलबर्न से हमारे पास फरमाइश आई है शीला सिंह की ओर से। आप सुनना चाहती है लता जी की आवाज का गाना।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: दोस्तों
8: प्रिया, नेक्स्ट
7: तो हम चलते हैं केडरन पार्क की ओर। फरमाइश है हमारे पास केडरन पार्क से जोनिया सविता की ओर से।

0: जरूर दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में। हमारा प्रोग्राम सुन रहे हमेशा की तरह के डोंट पार्क में जोनी और सविता।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: एंड आई एम सू, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। अभी से लेकर ठीक 5 बजे तक साथ ही दोस्तों हमारा आपका 13 मिनट हो गए। हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर है ब्रिस्बेन टाइम, और चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर। हमारे साथ शामिल होंगे ललिता गौतम, और आप सुनना चाहते हैं अगला गीत।

0: नमस्कार है दोस्तों, इस कवाली को फरमाइश करने वाले थे वहाँ सेक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम, वेरी पावरफुल, वेरी टचिंग, जिसने तेरा दर्द नहीं जाना सूफी कवाल एल्बम से लिया हुआ गीत था, बहुत प्यारा सा। ललिता जी, आई गोट अ फ्यू कॉल्स हियर, पीपल लव द सॉन्ग, ये सूफी कवाली एल्बम से है दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: चलते हैं दोस्तों, समय की ओर देखा जाए तो हमारे स्टूडियोज में बस 4:15 ही बजने वाले हैं। हमारे पास एक अनाउंसमेंट है सीनियर्स डे की, और सीनियर्स डे 24 अक्टूबर को है रनकोन हाइट्स स्टेट स्कूल पर। 200 पता है 200 निमिस रोड रनकोन। इवेंट इज फ्री रिफ्रेशमेंट एंड लंच प्रोवाइडेड, और इवेंट इज सपोर्टेड बाय जयरी मीडिया ग्रुप। RSVP आप 18 अक्टूबर तक कीजिए, और कॉल करने के लिए यानी कि फॉर RSVP आप कॉल करें राजप्रसाद को 0403235507, 0433235507, और शोभना बली ऑन 0481235798 पर। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी, आपकी अपनी पहचान। तो चलते हैं राज और रोशनी, आप दोनों के लिए अगला गीत सुनते हैं।

0: बहुत प्यारे से गीत दोस्तों, आम बीमा के ऊपर आपने सुना दुर्गा माँ भजन, और इससे फरमाइश करने वाले थे राजन रोशनी फ्रॉम स्ट्रैटन। दोस्तों याद रखिएगा, गो एंड सेलिब्रेट सीनियर्स डे विद योर लव्ड वन सीनियर्स एट ऑन 24th of October। टाइम इज 10:30 AM टिल 1 PM एट ट्रेनकोन हाइट स्टेज स्कूल 200 रिमिस रोड ट्रेनकोन। इवेंट्स आर फ्री एंड रिफ्रेशमेंट एंड लंचेस आर प्रोवाइडेड। और बाकी जानकारी के लिए यानी कि RSVP के लिए आप 18th अक्टूबर तक RSVP कीजिए। राज प्रसाद को 0403235507 0403235507 और शोभना बली और 0481235798। रिमेम्बर शोभना बली और 0481235798। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। मेरे तुम्हारे
1: सब चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156। आई रिपीट 0405409156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
0: चलते हैं दोस्तों अगला गीत की ओर। हम बढ़ते हैं सैक्रामेंटो USA से। अगला गीत की बोल क्या है? तेरी कुर्ती सेक्सी लगती है। फरमाइश करने वाले हैं विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो।

0: नमस्कार दोस्तों, सेक्सी कुर्ती की फरमाइश किसने किया था? सैक्रामेंटो से हमेशा ही सेक्सी सेक्सी गीत या चटनी गीत फरमाइश करते हैं सिर्फ एक ही पर्सन है, ओ है विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

तो इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे गंगा और गीता जो हमें सुन रहे हैं रेड बैंक में। चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। हम चलते ग्रीन एकर सिडनी की ओर। रजिन और मालती प्रसाद हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आप दोनों के लिए पेश अगला गीत।

बहुत प्रसंगीत दोस्तों, जिसे फरमाइश करने वाले थे रजिनो मालती प्रसाद, जो हमें सुन रहे हैं ग्रीन एकर सिडनी में। चलते हैं अगला गीत को, बढ़ते हैं मैक्स प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ कैलिफोर्निया यूएसए में, आपके लिए अगला गीत।

0: में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। और दोस्तों रेडियो वस्पानी आईएम आप सुन रहे हैं, हमारे स्टूडियोज में 6 मिनट हो गए हैं 4:04।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
8: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
7: अच्छा, वो क्या?
8: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
7: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
8: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
9: Hi, this is Amitabh Bachchan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
13: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
15: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
16: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
17: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: चलते हैं अगला गीत में, हमारे साथ शामिल हो गए सूजी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो USA. सूजी, आपके लिए अगला गीत सुनते हैं।

तो हमारे पास फरमाइश आई थी, यानी हमारा प्रोग्राम सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में सूजी नारायण। हम चलते हैं अगले गीत की ओर, बढ़ते हैं जिलमिया की ओर। जीबंग, सॉरी जीबंग से हमारे पास फरमाइश आई है टॉम मनीराम की ओर से। आप सुनना चाहते हैं हमको हमी से चुरा लो।

मोहब्बत इसलिए आ गई था हमको, हमें से चुरा लो आपने सुना। और इसकी फरमाइश करने वाले थे जी बंसी टॉम मनीराम। हम चलते हैं पार्किंग सन की ओर दोस्तों। अगला गीत की फरमाइश हमारे पास आई पार्किंग सन से आशिक और आसमा की ओर से। हिसाब की आवाज का वही पॉपुलर सॉन्ग लाखों ही निगाहों में।

0: रफी साहब की आवाज का बहुत प्यारा सा गीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग फरमाइश करने वाले थे आसी को अस्मा, जो हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं, तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
0: फिजी की बात हो रही है दोस्तों, तो क्यों ना, आप सभी को पता है कि फिजी में फिजी डे सेलिब्रेशन कल हुआ था और मंडे को वहां पर पब्लिक हॉलिडे है। ब्रिस्बेन में यस्टरडे कल सनी बैंक में बहुत ही बड़ी एक फंक्शन फिजी डे यहां पर भी हुए, बहुत से लोग वहां पर भी थे। तो चलते हैं हम अपने फिजी वालों को आज याद करते हैं, क्यों हम उन्हें कैसे हम उन्हें भूल सकते हैं जबकि दिस आर मदर टंग लैंड।

0: 7 9 बहुत प्यारा सा गीत दोस्तों, एंड वी आर सो प्राउड दैट वी वर बोर्न इन फिजी. हमारे बाहर से जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन दोस्त हैं, हमेशा फिजी की तारीफ मुझसे करते ही रहते हैं और कहते हैं कि फिजी इज माय फेवरेट प्लेस, वी लव द पैराडाइज. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा. साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा. खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू. अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं. तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਅਨੁਜ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ ਲਾਇਰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਸਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਢੰਗ ਸੇ ਸੁਨੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾਏ।
2: ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਮਰਸ਼ਲ ਮੈਟਰ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਲੀਜ਼ ਕਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਯਾ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਬਾਇੰਗ ਸੇਲਿੰਗ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਡਿਵੋਰਸ ਜੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਵੀ, ਵੋ ਸਭ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਅਭੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 0420-933-171 ਪਰ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਕਾ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੋ।
1: ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਨਕਾ ਪਤਾ ਬਤਾਨਾ।
2: ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ, ਮਾਊਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟ ਸ਼ੋ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਆਫਿਸ 5-1644 ਲੋਗਨ ਰੋਡ, ਮਾਊਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟ, ਐਂਪਲ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਕਾਲ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫ੍ਰੋਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ ਨਾਓ ਔਨ 0420-933-171। ਵੈਬਸਾਈਟ www.arshadlawyers.com।
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
5: दोस्तों, हमारे पास एक बर्थडे अनाउंसमेंट आई है। जी हाँ, आज जो लोग भी आज अपनी जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत बधाई। और आज देखिए कौन हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे साथ राइड ऑफ रिजवानी के साथ शेयर करना चाहते हैं। 8 माइल्स प्लेन से हमारे पास कॉल है करीना। जी हाँ, करीना आज अपने 11th बर्थडे मना रही है और आज आपके जन्मदिन पर बहुत सारे से प्यार, बहुत सारे से बधाई आपकी मम्मी अल्पना ने भेजा है और आपकी नानी है 8 माइल्स प्लेन से मिसिस करण। जी हाँ, मिसिस मीना करण आपकी नानी ने याद किया है, प्यार बधाई भेज रही मिसिस मीना करण फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन। साथ में मामा अवि एंड मामी रेनू फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन, मौसी अविना एंड मौसा अविनेश फ्रॉम लोटोका फिजी। तो करीना, हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि जन्मदिन आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे करीना। ए दिन आपके जिंदगी में बार बार बार बार बार बार बार आए, साल के दिन हो 50,000। राइट ऑफ विजवानी टीम की ओर से वी विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
6: बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते ना,
5: आपकी चॉइस पर, आपकी नानी की चॉइस पर,
6: को मिल प्यारा
5: सकी।

0: खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: आओ करीना, हम भी आपको कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ दोस्तों, आज वहाँ एक मास प्लेन्स में करीना अपने 11th बर्थडे मना रही हैं अपनी फैमिली के साथ। मम्मी अल्पना ने आपको प्यार आशीर्वाद भेजे हैं, साथ साथ में बहुत से लोग ने आपको याद किया है। नानी फ्रॉम एट मास प्लेन्स मीना करण आपको आशीर्वाद और प्यार दुलार भेज रही है, साथ साथ में बहुत से लोग हैं। मामा अभी एंड मामी रेनू फ्रॉम एट मास प्लेन्स sending their love and regards to you. Mausi Abina, Arvina and Mausa Abinesh from Lotoka Fiji sending you the best love and regards. Happy birthday, Karina, once again. Many, many, many happy returns of the day.
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.

0: raysolarpower.com.au.
1: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
2: दोस्तों, समय की ओर देखा जाए, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 4:45 बज चुके हैं। शाम का सुपर रेडियो विस्वानी अयम आप सुन रहे हैं। एक बार फिर हमारे सीनियर्स की ओर से एक अनाउंसमेंट जो है, एक बार फिर आप सुनने अगर आपने मिस कर दिया है तो सीनियर्स डे सेलिब्रेशन टू गो एंड सेलिब्रेट अपने बहुत प्यारे प्यारे सीनियर्स के साथ जाके टाइम स्पेंड कर दिए। दोस्तों, सीनियर्स डे है 24th October और समय है 10:30 AM टिल 1 PM एट रनकोन हाइट्स स्टेट स्कूल 200 निमिस रोड रनकोन में है। साथ साथ में इवेंट्स आर फ्री, रिफ्रेशमेंट एंड लंच आर फ्री। और अगर आप आरएसवीपी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज आरएसवीपी बाय 18th October राजप्रसाद 0403235507 याद रहे 0403235507 और शोभना बली ऑन 0481235798 याद रहे शोभना बली का नंबर है 0481235798। तो चलते हैं अगला गीत के लिए, हमारे पास फरमाइश है, हम चलते हैं सैक्रामेंटो USA की ओर। अपना गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं विजयन और कामनी। चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

0: स्विस गीत को फरमाइश करने वाले थे विजेनो कामनी, जो हमें सुन रहे हैं सेक्रामेंटो यूएसए में। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में बस 5 ही बजने वाले हैं। हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड पर, नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस वीक, नाइस वीकेंड। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जय माता दी, वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, खैर मकदम। रेडियो ब्रिस्वानी पर एक बार फिर से आप हैं आपकी फरमाइशों के सफर, फरमाइशी गीतों में, और आपके साथ है सताक्षी। आज फिर से आपकी फरमाइशों की पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। जी हाँ, वो सारे गाने जो आज आपने रिक्वेस्ट किए हैं हमने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं कि हम आपके लिए प्ले कर पाए, और जिन्होंने अभी तक हमें रिक्वेस्ट नहीं की है वो हमें भेजते रहिए, हम उनकी फरमाइशों को पूरी करने की करेंगे पूरी पूरी कोशिश। आज भी फरमाइशी गीत बहुत ही खास है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो भाई माँ की प्रार्थना के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना सफर शुरू कैसे हो। तो आइए आपको फिल्म सुहाग से सुनवाते हैं पहले ही नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मैं रहूंगी आपके साथ फरमाइशी गीतों।

वेलकम बैक, फरमाइशी गीत एंजॉय कर रहे हैं आप, सताक्षी आपके साथ हैं, आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो प्रिस्वानी पर। और पहला मेल आज का जो हमें मिला है वो है सारिका, और आपने लिखा है हमें ब्रिस्बेन से। आप लिखती हैं कि सताक्षी हाय, ब्रिस्बेन में मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और इस मौसम में एक बहुत ही बढ़िया सा गाना सुनने का दिल कर रहा है, सलमान खान का दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से। प्लीज ये गाना हो तो प्ले कर दीजिए। बिल्कुल प्ले करेंगे भाई, क्यों नहीं है हमारे पास, बस आपकी फरमाइश आ जाए गाने तो हम ढूंढ के निकाल लेते हैं। चलिए, सलमान खान का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 107.0।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235. फरमाइशी गीतों में आपके साथ है सताक्षी, तो चलिए आज की अगली फरमाइश लेने से पहले हम बढ़ते हैं अपने एक और गाने के साथ आगे, और लिखते रहिए हमें आज की फरमाइशें और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

सो अभी मुझे पहला मेल मिला है सुनीता शर्मा का। आपने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से और आप लिखती हैं, हेलो आरजे, 80s में आरजे बर्मन साहब और आशा भोसले जी के कई हिट गाने आए, लेकिन अब फिल्म जीवा का गाना रोज रोज आंखों तले मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। आजकल के रेडियो स्टेशंस पर ये गाना कम ही सुनने को मिलता है। मेरी और मेरे पति की तरफ से ये फरमाइश प्लीज पूरी कीजिएगा। सुनीता जी और उनके हमसफर के लिए पंचमदा की ये खास धुन रोज रोज आंखों तले। 1986 की फिल्म जीवा का ये गाना है, जिसे अमित कुमार और आशा भोसले जी की जुगलबंदी का एक अनमोल नगीना माना जाता है। अगर आप भी इस वक्त कुछ मीठी यादों को ताजा करना चाहते हैं तो अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए और या फिर अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम्स को बढ़ा लीजिए और डूब जाइए इस धुन में रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीतों में।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
1: So welcome back. फरमाइश गीत एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर, और इस सफर में आपकी हम सफर है सताक्षी. आप और हम मिलकर आपकी ही फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं. तो हमें लिखते रहिए अपनी फरमाइशें, हम तक पहुंचाते रहिए, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फरमाइशें आज हम भी आप तक पहुंचाएं. फिलहाल चलिए चलते हैं आगे इस अगले गीत के साथ. हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर.

सुमी, मेरे पास है अगला मेल डॉक्टर अनिकेत का और आपने लिखा है मेलबर्न से हमें। आप लिखते हैं कि हाय सताक्षी, फरमाइशी गीत मेरा बहुत ही फेवरेट शो है और जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं अक्सर फरमाइशी गीतों को सुनना नहीं भूलता हूँ। वैसे संडे मेरा ऑफ रहता है इसलिए जनरली मैं ये शो सुन पाता हूँ। आज भी मैं ये शो सुन रहा हूँ और आज मैं भी अपनी फरमाइश आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो फरमाइशी गीतों में आप अक्सर वही गजलें बजाते हैं जो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह में इसलिए मिल जाती हैं। मेरी गुजारिश है कि पंकज उदास साहब की गजल आप जिनके करीब होते हैं बजाई जाए। ये मेरी देर रात की पढ़ाई और अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी रही है। तो डॉक्टर अनिकेत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें लिखने के लिए। और भाई, फरमाइशी गीत आपकी फरमाइशों का सफर है, तो आज भी आपकी फरमाइश जो है वो बहुत ही नायाब है। पंकज उदास जी की नजाकत और उनके शेरों की सादगी इस गजल को और भी खास बना देते हैं। जो लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी सी खामोशी और सुकून की तलाश में हैं, ये गजल सीधी उनके दिलों तक पहुंचेगी। तो चलिए आपके और हमारे लिसनर्स के नाम सुनते हैं, आप जिनके करीब होते हैं।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticketsco। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए

0: Believe inspired.
1: Welcome back to छोटे से ब्रेक के इस बार एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है। आप मेरे साथ सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। और आप भी अगर अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फेवरेट गाना इस वक्त आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर प्ले हो, रेडियो ब्रिस्वानी पर प्ले हो, तो लिखते रहिए हमें और हमारे रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर हमें बताते रहिए कि क्या है आपकी फरमाइशी और ट्रैक के साथ चलिए आगे चलते हैं। स्टे ट्यून, आपका अपना फरमाइशी गीत।

मेघा राय, आपने हमें दिल्ली से किया है आज का मेल अगला, और आप लिखती हैं कि सताक्षी आपको मैं हमेशा फरमाइशी गीतों में सुनती हूँ और रेडियो प्रसवानी मेरा बहुत ही फेवरेट चैनल है। आज फरमाइशी गीतों के जरिए मैं अपनी फरमाइश को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। 90s के आराम में सताक्षी इंडी पॉप और प्राइवेट एल्बम्स का एक अलग ही दौर था, और उस दौर के गाने सीधे दिलों को छू जाते थे। छोटे छोटे से एल्बम्स में पूरी पूरी कहानियां होती थी, लगता था जैसे हम मूवीज देख रहे हैं। तो आज एक गाना मुझे याद आ रहा है, गोरी तेरी आंखें कहें। प्लीज, आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर ये गाना सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आज ऐसे सुकून देने वाले इंडी पॉप गाने बजना लगभग बंद हो गया है। तो प्लीज ये गाना मेरे लिए प्ले कर दीजिए। भाई मेघा, आपने बिल्कुल सही कहा, 90s का वो दौर जब म्यूजिक वीडियोस का इंतजार रहा करता था हमें। गोरी तेरी आंखें कहें, बहुत ही खूबसूरत है ये गाना, और 90s के इंडी पॉप का एक बहुत ही मशहूर और प्यारा गाना है ये। तो चलिए बिना देर किए 90s के एरा की उन हसीन यादों में खोते हैं इस अगले ट्रैक के साथ, गोरी तेरी आंखें कहें। सुनते रहिए हमारे साथ इस गाने के साथ रेडियो ब्रसवानी, और सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

सो विक्रम सिंह का है दोस्तों हमारे पास अगला मेल और आपने हमें लिख भेजा है कनाडा से। आप लिखते हैं कि नमस्ते सताक्षी, 1994 में आई फिल्म इम्तिहान का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, चाह तो बहुत ना चाहे तुम्हें। प्लीज इस गाने को अगर आप यहाँ पर प्ले कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये गाना एक वक्त में बहुत पसंद किया जाता था लेकिन समय के साथ लोग इसे भूल से गए हैं। अपने शो में इस नगमे को जगह जरूर दीजिएगा। विक्रम सिंह जी, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इतने प्यारे गाने को रिक्वेस्ट करने के लिए। चाह तो बहुत ना चाहे तुम्हें, कुमार सानू और बेला सुलेखे जी की आवाज में है ये गाना। और एग्जैक्टली कि कुछ गाने ना हम थोड़े से भूल गए हैं लेकिन रेडियो प्रिस्वानी पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि उन सभी गानों को जिंदा रखा जाए और ये गाना भी हमने कई बार प्ले किया है लेकिन आज आपकी फरमाइश पर रेडियो प्रिस्वानी पर फरमाइशी गीतों में भी ये गाना जरूर प्ले होगा। और बहुत ही ढूंढ कर निकाला है आपने ये गाना, ये बात तो माननी पड़ेगी। अनु मलिक साहब ने इसको कम्पोज किया है और ये ट्रैक 90s के उन गानों में से है जो आज बेशक खो गया हो लेकिन उस दौर में इसकी एक अलग ही बात थी। तो अगर आपने भी कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है तो ये गाना आपके दिल के तार जरूर छेड़ेगा। चाह तो बहुत ना चाहे तुम्हें, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: साक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. आपकी फरमाइशों को आगे लेकर चलेंगे एक और बहुत ही प्यारे गाने के साथ अभी, और उसके बाद देखेंगे कि अगला जो हमारे पास मेल पहुंचा है, अगला जो मैसेज पहुंचा है वो किसका है. कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम.

सो अगला जो इस वक्त हमें हमारी वेबसाइट पर मेल दिख रहा है वो है प्रिया और उनके दोस्तों का ब्रिस्बेन से। और आप लिखती हैं कि सताक्षी, हम 90s के किड्स हैं। कॉलेज के दिनों में आर्यन्स बैट का गाना आंखों में तेरा ही चेहरा हमारा एंथम हुआ करता था। आज इस शो के जरिए हमारे पूरे ग्रुप के लिए ये गाना प्लीज प्ले कर दीजिए। सो भाई, प्रिया और उनके पूरे गैंग को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। और 90s के इंडी पॉप बैंड्स का मजा ही कुछ और था। हल्की फुल्की गिटार की धुन और पहला पहला प्यार। लीजिए, आपकी फरमाइश पर हाजिर है आर्यन्स का ये कल्ट क्लासिक ट्रैक आंखों में तेरा ही चेहरा। शाहिद कपूर थे इस एल्बम में, राइट? एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ हैं आप।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: वैसे कवाली का भी अपना एक रंग होता है, जहां गाना सीधे आपके कानों तक नहीं पहुंचता, सीधे महफिल में उतर जाता है। आइए अभी जरा मूड बदलते हैं और आगे चलते हैं एक और गाने के साथ। इसके पहले कि हम अगली फरमाइश लें, हमारे साथ सुनते रहिए रेजी ब्रिस्वानी और सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

सो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो जतिन की है, और आपने ये फरमाइश ब्रिस्बेन से भेजी है हमें, और आप लिखते हैं कि सताक्षी की काश कुछ रिश्ते कभी खत्म ना होते, काश कि हम उन रिश्तों को सिर्फ जीते जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार सोचता हूँ कि मैं रिश्तों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो गया, अक्सर मैं ही क्यों चोट खाता हूँ, और जब भी ऐसा लगता है मैं सुनता हूँ फिल्म मन का गाना चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, तो आज भी मैं इसी गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ। सो अगर हो तो प्लीज प्ले कीजिएगा। बिल्कुल अभी आपके लिए ये गाना हम प्ले करेंगे। और जहां तक बात रही कि आप क्यों ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना वो सच्चाई के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं। हम सभी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सच्चाई की वैल्यू नहीं कर पाते और आखिर में जाकर उन्हीं को प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि उन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती है, सच्चा कोई चाहने वाला नहीं मिलता है, है ना। तो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे ही रहिए जैसे आप हैं। आपके लिए फिल्म मन से प्ले करते हैं चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। आमिर खान और मनीषा कुरैला का ये खूबसूरत गाना सुनिए, और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो प्रस्वानी पर फरमाइशी गीत।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी
4: का है। दोस्तों हमारे पास अगला मेल और आपने हमें लिखा है कनाडा से, और आप लिखती हैं कि सताक्षी फरमाइशी गीत मैं रेगुलरली सुनती हूँ और मेरे और मेरी दीदी दोनों का ये बहुत ही फेवरेट शो है। हम सबकी फरमाइशों को बहुत इंजॉय करते हैं और आज हम अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं। हम दोनों का एक डांस कंपटीशन है यहाँ पर और जिसमें बॉलीवुड की थीम पर हमें डांस करना है। हमने चुना है निमोड़ा फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और इसी गाने की प्रैक्टिस इस वक्त हम फरमाइशी गीतों के थ्रू करना चाहते हैं। सो प्लीज प्ले कीजिएगा। तो भाई इतना प्यारा आपने एहसास जगा दिया है कि आप बॉलीवुड के गानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कनाडा में और इस वक्त आप सुनना चाहते हैं निमोड़ा, तो ये गाना तो बनता है भाई आपकी प्रैक्टिस के नाम, आपकी जीत के नाम ये गाना तो बनता है। एंजॉय कीजिए आप दोनों बहनों के लिए निमोड़ा हम दिल दे चुके सनम से, और आई होप कि बाकी के लिसनर्स को भी मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी।

फ्रेंड्स, ये था आज फरमाइशी गीतों का साथ, जिसमें हम आपके साथ थे और आपकी फरमाइशें हमारे साथ थी। आप हमसे जुड़ते रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, हम उन्हें नेक्स्ट संडे जरूर प्ले करेंगे इसी शो फरमाइशी गीतों में। लेकिन ये वक्त जो अभी है, ये है आज के प्रोग्राम से विदा लेने का, इजाजत लेने का। सो अपना ख्याल रखिए, जिंदगी को जीते रहिए, मस्त रहिए और मंडे की तैयारी करिए। हाँ, 2 दिनों के वीकेंड्स के बाद कल ऑफिस है आपका और एक नए वीक की शुरुआत है। सो ऑल द बेस्ट और अभी लेती हूँ इस सफर से विदा। नमस्कार।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan
12: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे। सारे शहर में किस किस को तुम जंजीरें पहनाओगे। भूल है कोई खार नहीं हम, आओ हम में आ बैठो। खुशबू में आबाद रहोगे, खुशबू ही कहलाओगे। खुशबू ही बने रहिए, महकते रहिए, महकाते रहिए, बिल्कुल मेरे यानी निलय के साथ बने रहिए पल दो पल पर। नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मैं पल दो पल। यही है हमारे शो का नाम जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पर। संडे की शाम में हम शुरुआत करते हैं आज के पल दो पलों की। आप मेरे साथ रहेगा, ये पल मेरे साथ आपको बिताना याद रखेगा आप, हाँ वादा कीजिए। तो शुरू करता हूँ कि वो एक नन्ही सी लड़की, जरा गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि ये कहीं आपके आस पास की कोई कहानी बयां कर रहा हो। कि वो एक नन्ही सी लड़की, बर्फ के गाले से नाजुक तर, हवा में झूलती शाखों की खुशबू उसका लहजा था, चमकते पानियों जैसी सुबक रौ उसकी बातें थी, वो उड़ती तितलियों के रंग पहने जब मुझे तकती तो आंखें मीच लेती, मगर अब वो नहीं है, मगर अब वो नहीं है, खुदा जाने कहां किस हाल में है। मैं हर उजड़े हुए मौसम में उसको याद करता हूं तो आंखें मीच लेता हूं, तो आंखें मीच लेता।

कभी कहीं इतना बेघर लगता है मन, कपड़े बदलते हुए भी लगता है जैसे घर बदल लिया। और तभी तो जब बेघर सा हो जाता है मन, मैं आपके पास चलाता हूं एक बार फिर से आपका स्वागत। पल दो पल का साथ हमारा और आपका जरूर रहे, ये वादा आपने किया था ऐसा मैं मान रहा हूं। मैंने किया है, पर ये वादा मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ये याराना ये यूं ही आबाद रहे और गहरा रहे, हम यही चाहते हैं, लंबी दूरी तक चले। क्योंकि मैं हर रविवार को आपसे मिलने चलाता हूं, सजाता हूं पल दो पल की महफिल, जहां मैं आपको बहुत सारे गाने सुनाता हूं, कुछ अपने दिल की कहता हूं, कुछ आपके दिल की सुनता हूं।

कांटों में जो फूल खिला है जब देखो हंसता रहता है, कांटों में जो फूल खिला है जब देखो हंसता रहता है, डाली पर एक पीला पत्ता जाने क्या गिनता रहता है। सुनते हैं एक हवा का झोंका इस खुशबू को ले भागा है, सुनते हैं एक हवा का झोंका इस खुशबू को ले भागा है, बहते पानी पर दीवाना किसको खत लिखता रहता है। किसको खत लिखता है, खत में क्या क्या लिखता है, ये तो हम पढ़ नहीं सकते, पर उन खतों में, हर्फों में छिपी खुशबुओं को सिर्फ वो पहचान सकता है जिनके लिए वो खत लिखा गया हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो पहचान जाएगा।

बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाँ जी, वेलकम बैक। चाहे कैसा भी वक्त हो, बदलना सीखे जनाब। आज मैं बदलने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब साल भी बदलने वाला है, कैलेंडर भी बदल लेंगे आप, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी एक बार नए सिरे से आप करेंगे लेंगे, और पता नहीं कितने आप पूरे कर पाते हैं। मैं कभी नहीं पूरा कर पाता, इसलिए मैं कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता ही नहीं हूं। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूं निलय, और कुछ पलों के म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे फिर से हाजिर हो गया हूं आपके साथ बिताने के लिए पल दो पल। करूं कुछ अर्ज अगर आप कहें तो, और अगर आप नहीं भी कहेंगे तो मैं तो अर्ज करने वाला हूं। तो जनाब इरशाद कह दीजिए, सिर्फ एक सफा कहते हैं पेज को, कि सिर्फ एक सफा पलट कर उसने बीती बातों की दुहाई दी है, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है।

बैठे बिठाए हाल दिल जार खुल गया, मैं आज उसके सामने बैठकर बेकार खुल गया। वेलकम बैक। मैं अपना हाल दिल तो बयां कर देता हूँ, पर आप लोग कुछ नहीं कहते, क्यों? आइए ना, बताइए मुझे अपने दिल का हाल, क्या सोचते हैं आप इस प्रोग्राम के बारे में। रेडियो ब्रिस्वानी के ऑफिशियल पेज पर आइए और दिल खोलकर दिल की तमाम बातें हमसे कहिए, लिख भेजिए। तो मैं कुछ अर्ज कर दूं कि मैं तुझे ढूंढने निकला घर से और अपना ही पता भूल गया, मैं तुझे ढूंढने निकला घर से और अपना ही पता भूल गया। अब न वो तू है न मैं, न वो रास्ता है न पेड़, न वो मंदिर है न कुटिया न चराग। आओ ढूंढे, मैं तेरे कुर्ते का दामन थामूं, मैं तेरे कुर्ते का दामन थामूं। आओ हम रेल बनाएं, आओ हम रेल को पीछे ले जाएं। वैसे तो अक्सर कहते सुना है हमने कि जिंदगी एक सफर है और उस सफर में एक पूरा नया सफर है, इश्क। जिंदगी की तमाम खुशियों गमों से परे एक अलग ही एहसास है ये। इश्क में हो तो दिल किसी रेल के इंजन की तरह धुकड़ धुकड़ करता है, चाहे वो खालीपन में हो या फिर अपने प्यार से मिलने के लिए धुकड़ धुकड़ कर रहा हो। आज हम आपको लिए चलते हैं किसी रेल की पटरी पर, जहां से जब धड़धड़ा के गुजरे कोई ट्रेन तो उसकी जुल्फें उड़ा दी हवाएं, दो बोगियों के बीच के गैप से बड़ा सा पीला चांद बार बार झांकता रहे। आइए ले चलें आपको उस दौर में किसी ट्रेन के सफर पर।

वेलकम बैक। ये मोहब्बत के सफर की रेल का एक ऐसा एहसास है जो मुसलसल चलता ही रहता है, जैसे रेल के डिब्बे लगे रहते हैं कि बाद एक एक के पीछे एक। वैसे ही आपसे मिलने की इच्छा हमें ले आती है इतवार दर इतवार। तो कुछ अर्ज कर देता हूँ कि इतनी रेलें चलती हैं भारत में, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो इतनी रेलें चलती हैं भारत में

की प्यास से गहरी कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा मुझसे फिर एक बार मिलकर लौटने पर। दुख सुख हो तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव, इनकी ताजगी रहेगी यहीं हवा में। और इन्हीं हवा में बहते हुए रेडियो तरंगों के जरिए मैं भी आप तक पहुंच रहा हूं और पहुंचा रहा हूं ये बेहतरीन नगमे रेडियो ब्रिस्वानी पर। कीप लिसनिंग।

निलय के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर पल दो पल, या मैं कहूंगा कि आप बिता रहे हैं ये खूबसूरत पल दो पल। पता नहीं आपके लिए खूबसूरत है या नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ मुखातिब हूं, आपसे मिल रहा हूं। तो जिंदगी की राह में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसके आगे हर कोई खुद को अकेला पाएगा। कौन कितना जब्त कर सकता है कर्ब हिजर को, रेल जब चलने लगेगी फैसला हो जाएगा। क्योंकि रेल जब चलने लगती है तब दिल को थामे रखना जरूरी होता है। प्लेटफॉर्म पर कितने चेहरे, कितने मंजर, कितने हाथ छूट जाते हैं और किसी खास शख्स की उन छूटती उंगलियों की छुअन देर तक हवा में हिलता हुआ हाथ नजरों से जाता ही नहीं है, बल्कि नजरों में ही बस जाता है। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो।

ये उम्मीद और बीम का आलम, कौन से दिन मंढे चढ़ेगी बेल, हाय ये इंतजार के लम्हे, जैसे सिग्नल पे रुक गई हो रेल। आप एक काम कर सकते हैं, इश्क का ये सफर तय कर सकते हैं, करते करते तराने भी सुन सकते हैं, गुनगुना भी सकते हैं, अपने जज्बात हमें लिखकर भेज सकते हैं। आप सुन रहे हैं पल दो पल, या यूं कहूं बिता रहे हैं पल दो पल अपने निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। इस तरह रेल की हमराह रवा है बादल, बादल भी ट्रेन के साथ साथ चलते ना। इस तरह रेल की हमराह रवा है बादल, साथ जैसे कोई उड़ता हुआ मैखाना चले, शहरे जाना में उतरने की थी हम पर कदगन, यूं चले जैसे कोई शहर से बेगाना चले। हम आज आपको अपने साथ रेल की पटरियों पर लेकर चले हैं, एक पटरी पर आप, दूसरी पटरी पर हम चल रहे हैं आपका हाथ थामे हुए। सुनते रहिए और बने रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर अपने निलय के साथ।

0: रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, मुन्ने के डैडी जी को लाएगी।
1: अच्छा,
0: दिल्ली से रेलगाड़ी छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी।

रेल के सफर पर कई ऐसे अनजान चेहरे होते हैं जिनसे हम जुड़ जाते हैं। वो कुछ घंटे इस जिंदगी के सफर के लिए बेहद यादगार बन जाते हैं। कभी कभी तो कोई याद इतनी खास होती है कि हर उम्र की तमाम परतों के भीतर कहीं गहरे में दबे हुए उस चेहरे को जब तक अपनी आंखों के सामने आप महसूस नहीं कर लेते हैं और यादों की मालगाड़ी पर सवार होकर निकल नहीं पड़ते हैं, तब तक चैन ही नहीं पड़ता। सवाल यह है कि आपस में हम मिलें कैसे। अर्ज कर रहा हूं कि सवाल यह है कि आपस में हम मिलें कैसे। हमेशा साथ तो चलते हैं दो किनारे भी, बड़े सुकून से डूबे थे डूबने वाले, जो साहिलों पे खड़े थे बहुत पुकारे भी। जैसे रेल में दो अजनबी मुसाफिर हों, सफर में साथ रहे यूं तो हम तुम्हारे भी। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो आपसे और बातें करेंगे। आप भी किसी अपने सफर की याद ताजा कर सकते हैं, हमसे शेयर जरूर कीजिएगा और सुनते रहिएगा पल दो पल निलय के साथ।

दुख की लहर ने छिड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा, आज तो मेरा दिल कहता है तू इस वक्त अकेला होगा। मेरे चूमे हुए हाथों से औरों को खत लिखता होगा, भीग चली अब रात की पलकें, तू अब थक कर सोया होगा। रेल की गहरी सीटी सुनकर रात का जंगल गूंजा होगा। मैं तो आज बहुत रोया हूं, मैं तो आज बहुत रोया हूं, तू भी शायद रोया होगा। नासिर तेरा मीत पुराना, तुझको याद तो आता होगा। रेल की आवाज आज भी किसी धुन से कम नहीं लगती है, मुझे तो नहीं लगती है। कभी सुना है आपने? याद कीजिए कभी आप जब इंडिया में थे, रात को जब कोई रेल की आवाज आती थी, रेल की सीटी की आवाज फजा में गूंजती थी और वो आवाज हमें हमारे होने का, जिंदगी के सफर पर होने का एहसास कराती थी। इन्हीं एहसासों को आज हम जी रहे हैं पल दो पल में।

वेलकम बैक। इश्क की रेल यात्रा पर हैं आज आप नीले के साथ। समा कुछ सुहाना है और इस सफर पर एक नज्म और पेश कर देता हूँ मैं। भाई मेरा तो यही दस्तूर पुराना है। आसमानों से जमीन की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। आसमानों से जमीन की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। तोड़ डालेंगे किसी घने जंगल का गुरूर, लकड़ियां चुनते हुए आग जलाते हुए हम। तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो, जिसे देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम। खुद को याद आते ही बेसाख्ता हंस पड़ते हैं, कभी खत तो कभी तस्वीर जलाते हुए हम। रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली। याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम, याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम।

वेलकम बैक, मैं हूं नीलम आपके साथ रेडियो प्रिस्वानी पर। पल दो पल का ये खूबसूरत सफर चल रहा है यहाँ पर, और आज हम रेल की बात कर रहे हैं। हमने फिल्मों में भी तो देखा है रेल को, कई मिलने बिछड़ने के सीन्स फिल्म के प्लेटफॉर्म पर ही हुए हैं। गुलजार साहब की एक फिल्म है इजाजत, जिसमें रेखा, नसीरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल हैं। तो एक सीन है जिसमें रेखा और नसीरुद्दीन शाह ट्रेन के डिब्बों की खड़खड़ाहट के साथ कितने ही एहसास उन दोनों के दिल में भी धड़कते रहते हैं। फिलहाल एक और नज्म ले आया हूं मैं आपके लिए, आइए सुनते हैं। वो सर्द रात जबकि सफर कर रहा था मैं, रंगीनियों से जर्फ नजर भर रहा था मैं, तेजी से जंगलों में उड़ी जा रही थी रेल, ख्वाबीदा कायनात को चौंका रही थी रेल, मुड़ती उछलती कांपती चिंघाड़ती हुई, कोहरे की वो दबीज रिदा फाड़ती हुई, बेनूर होके डूबने वाला था महताब, कोहरे में खुप गई थी सितारों की आबोताब, डाला कभी फजाओं में खत खो गए कभी, झलके कभी उफुक में निहा हो गए कभी, झलके कभी उफुक में निहा हो गए कभी, इंजन से उड़ के कांपता फिरता था यूं धुआं, लेता था लहर खेत में कोहरे के आसमां, उस वक्त क्या था रूह पे सदमा न पूछिए, उस वक्त क्या था रूह पे सदमा न पूछिए, याद आ रहा है किससे बिछड़ना न पूछिए, दिल में कुछ ऐसे घाव थे तीरे मलाल के, रो रो दिया था खिड़की से गर्दन निकाल के, रो रो दिया था खिड़की से गर्दन निकाल के।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल दिल की तमाम गहराइयों से। मैं हूं निले आपके साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। बहुत खूबसूरत ये पल दो पल मैंने आपके साथ बिताए। आज हमने ट्रेन की बात की। ट्रेन का नाम सुनते ही किसी सफर की यादें जहन में घूमने लगती हैं और ये ट्रेन की तमाम तरह की आवाजें जहन में गूंजने लगती हैं। सफर को महसूस भी किया हमने आज। जिंदगी एक सफर है, ये हम सब जानते हैं। सफर में आप भी हैं, हम भी हैं। फिलहाल तो एक नया साल आपके सफर पर है हमसे मिलने को, और पुराना साल सफर करेगा हमसे दूर जाने को। नीले के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं पल दो पल। और जाते जाते कुछ अर्ज कर देता हूं आपके लिए कि मंजर गुज़िश्ता शब के दामन में भर रहा है, दिल फिर किसी सफर का सामान कर रहा है। या रत जगों में शामिल कुछ ख्वाब हो गए हैं, चेहरा किसी उफुक का या फिर उभर रहा है। या यूं ही मेरी आंखें हैरान हो गई हैं, या मेरे सामने से फिर तू गुजर रहा है। दरिया के पास देखो कब से खड़ा हुआ है, ये कौन तिश्ना लब है पानी से डर रहा है। है कोई जो बताए शब के मुसाफिरों को, कितना सफर हुआ है, कितना सफर रहा है। चलिए अभी निलय का पल दो पल का सफर यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात होगी तो एक नया कोरा साल आपके सामने होगा पूरा का पूरा। उसे भर लीजिएगा अपनी तरक्कियों से, यादों से, रंगों से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांद्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिसबेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिसबेन.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: लिए तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 38 1360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430 525

8896 दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांद्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली ऑन 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद ऑन 0402-422-777।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

आराधना सुनने वाले सभी भक्तजनों को सताक्षी का प्यार भरा नमस्कार। आज आराधना की एक और प्रस्तुति रीटू प्रस्वानी आपके लिए लेकर आया है, जहां पर आप एक बार फिर से भक्ति के रस में सराबोर होंगे, डूबेंगे भक्ति के रस में हमारे साथ। श्रोताओं, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि माँ दुर्गा का त्योहार है। माँ दुर्गा जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेती रही हैं और दुष्टों का संहार करती रही हैं। माँ दुर्गा के नव रूपों की आराधना करते हैं हम नवरात्रि में। नवरात्रि यूं तो चार बार होती है साल में, लेकिन मुख्य रूप से दो बार, साल में दो बार नवरात्रि मनाई जाती है और माँ के भक्तों के लिए अत्यंत पावन दिन होते हैं ये। इस दिन कोई भी काम कीजिए, चाहे दिन कोई भी हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है, क्योंकि नवरात्रि चल रही होती है। तो आइए इन मंगलकारी दिनों के लिए माँ का धन्यवाद अर्पित करें और आराधना में आज नवरात्रि से शुभारंभ करें। सुनते रहिए रीटू प्रस्वानी 1701 सताक्षी के साथ।

आप सभी भक्तजनों को एक बार पुनः नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि चैत्र मास की नवरात्रि असल में हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। हर साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा सबके घरों में 9 दिनों के लिए निवास करती हैं और भक्तजन माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी सभी दरिद्रता को हर कर घर में सुख और संपन्नता लेकर आए। आइए हम भी माँ के चरणों में शीश नवाते हैं और उनसे कहते हैं, हे गौरी माँ, हमारे समस्त कष्टों का निवारण कर, हमें सुख संपन्नता और शांति में विलीन कर दीजिए। सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

नवरात्रि का प्रारंभ होते ही माँ के मंदिर गूंज उठते हैं उनके जयकारों से। भक्तों की भीड़ जहाँ तहाँ देखने को मिलने लगती है और वैष्णो देवी का तो नजारा ही क्या। दूर दूर से भक्तजन आते हैं माँ के दर्शनों के लिए। माँ की एक पुकार पर उनके भक्त न सिर्फ देश से बल्कि विश्व के कोने कोने से दौड़े चले आते हैं और माँ के चरणों में अपना शीश नवा देते हैं और माँ अपने भक्तों पर लाड़ दिखाते हुए उन्हें प्यार से आशीर्वाद देती हैं, सुख का, हमेशा सही रास्ते पर चलने का और उनके सभी कष्टों को हरने का वादा करती हैं उनसे। माँ अपने भक्तों से ये कहती हैं कि जब भी उनके समक्ष कोई कष्ट आएगा तो माँ उस रास्ते पर खड़ी मिलेंगी उन्हें। एक भक्त को भला और क्या चाहिए, उसके लिए तो माँ की इतनी करुणा ही काफी है। आइए हम भी माँ से निवेदन करें कि वो हमारे भी समस्त कष्टों को दूर कर हमारी सभी गलतियों को माफ करेंगी। सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

माँ के नौ रूप उनके चरित्र के हर गुण को दर्शाते हैं। ये नौ रूप असल में नौ अवतार हैं, जो विभिन्न मौकों पर माँ को धारण करने पड़े। माँ ने अपने हर एक रूप में एक नया संदेश दिया, संदेश दुष्टों के संहार का, संदेश इस दुनिया में जब भी पाप बढ़े माँ के आगमन का, संदेश इस दुनिया को बचाने का, संदेश अपने भक्तों की रक्षा का। माँ के हर जन्म में आपको ये सारे संदेश मिल जाएंगे। खड़ग खपर धारण करने वाली माँ अगर चामुंडा है तो शील रूप में विराजमान ब्रह्मचारिणी भी है। आइए माँ के नौ रूपों को नमन करते हैं। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आज की आराधना सताक्षी के साथ।

0: आराधना सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। श्रोताओं आपके साथ है सताक्षी और चलिए महाराज जी से अब लेते हैं जीवन का ज्ञान, जानते हैं आज का सार महाराज शिवेंद्र पुरी जी से, जानते हैं आज जीवन के कौन से अध्याय के विषय में वो हमें विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं महाराज शिवेंद्र पुरी जी का प्रवचन।
1: तथमै श्रीकृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य वीर्याय अज्ञानांशुप्रदाने शिरचरनिकरव्याप्यधिरव्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धीषणोद्भासितान् कामजन्यान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं माया भोजयन्नो माया संख्यतुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री
2: बताएं कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, आज है मोक्ष क्या है। ये तो बड़े विषय लंबे हैं। धर्म से दत्तम घूतम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा छिपा हुआ है, बड़ा गूढ़ है, अच्छे अच्छे लोगों के समझ में नहीं आता। पर जितना हम समझ सकते हैं, सबसे साधारण बताया, सबसे साधारण धर्म बताए, बहुत बढ़िया। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बहुत कठिन है। जो आपको अच्छा न लगे वो दूसरे के साथ मत व्यवहार करो, जो आपको अच्छा न लगे दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। सुनने में कितना अच्छा लगता है लेकिन जीवन में पालन करना कितना कठिन होगा। इसे छोटी छोटी विधा जो धर्म की है ना उसका पालन करो, बड़ी बात मत सोचो, नहीं कर पाओगे। और फल होता है क्रिया के संपादन का, सोचने का नहीं। सोचो अच्छी बात हो तो बुद्धि का काम है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए लेकिन जितना करोगे उतने का फल मिलेगा। इसलिए अगर अच्छी बात समझ में आए तो उसको करो। धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां भी मिले, जहां भी अच्छी बात सुनने को मिले जाओ, जहां से भी अच्छी बात मिले ले लो। देखो भंवरा कोई बड़ा फूल छोटा फूल नहीं देखता, छोटे फूल से भी शहद ले लेता है, बड़े फूल से भी शहद ले लेता है। अच्छी बात जहां से भी मिले ले लो। इसलिए थोड़े थोड़े में धर्म का संपादन करते रहो। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा धर्म बहुत बड़ी विपत्ति से छुड़ा देता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, भगवान का हाथ कट गया, उस पर द्रौपदी ने कपड़ा बांध दिया, छोटा सा कपड़ा बांध दिया लेकिन उसको कितनी बड़ी विपत्ति से बचाया। अनजाने में अजामिल ने फेंक दिया, माला फेंक दिया, तो दियम वस्तु को बिंदम, सुन रखा था भगवान है, फेंक दिया भगवान के नाम से, है ना। उसका परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग में भी ऋषि मिल गए उसको सही राय देने वाले, उसको मालूम था कि हम बहुत देर तक नहीं रह सकते। ऋषि से पूछा क्या करना चाहिए, बोले सब दान कर दो क्योंकि कल तो तुम्हारा रहेगा नहीं, लेकिन आज जो तुम दान कर दोगे उसका अनंत फल मिल जाएगा। बुला के सब ऋषियों का स्वागत किया और दान दिया, ले जाओ जो तुमको जो चाहिए ले जाओ। ऋषि लोग भी बड़े खुश हो गए, वाह क्या दानी है, उसको क्या पता ये कौन है, अनंत ऐश्वर्य शक्ति संपन्न वो बलि हुआ है जिसकी चौकीदारी भगवान करने लगे, भगवान को भी देने वाला बलि। राजा बलि के नाम आपने सुना, लेकिन उसकी पूर्व कहानी कैसी है, इसलिए ये मत सोचो कि बहुत होगा तो करेंगे, नहीं अपने लिए भी करो, कंजूस मत हो अपने लिए। एक जात महनो जनाहा, माता पिता के लिए सोचो, पत्नी के लिए सोचो, बच्चों के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो। सच तो यह है कि पहले अपने लिए सोचो, अपने लिए ये सोचो कि मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा क्या, वो भी करो। इनका किया हुआ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इस बात को झुठला नहीं सकते हो, और इससे आत्मा बलवान होती, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। कोई कहे कि ये अपराध है, ऐसा नहीं, और आप अपना उद्धार कर सकते हैं, आपका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई नहीं उद्धार करेगा, बस मरने की देर है। अगर बहुत पैसा है तो बोलेंगे जितना जल्दी हो सके ले जाओ इनको, और क्यों क्यों भाई जल्दी क्यों, आके बंटवारा जो करना है, चलो श्री राम भरसक तो उसी समय ही शुरू हो जाते हैं, फूकेंगे बाद में, वही हिसाब किताब पूरा कर देते हैं। और मोह ने अंधा कर दिया, मोहांधो नहीं वो पश्यति, इसलिए मोह में अंधे मत हो, मोह का काम ही उल्टा दिखा देना, जो नहीं है वो अपना है। हाँ लेके आए सबको, हम लोगों के पास सब दुखी आते हैं, सुखी तो कोई आता ही नहीं, बस सुखी उतने लोग हैं जितने यहां आ गए, चौर श्री राम, बस यहां आ गए अब सुखी हो गए। और उनका दुख मोह का, लोभ का, अहंकार का, अपने पद का, अनुरोध का, बस यही दुख है। वो मन से दुखी है, शरीर से तो बहुत बढ़िया देखने में हा? लेकिन अगर आदमी मन से दुखी है तो कितना भी सुंदर क्यों न हो बड़ा कुरूप दिखलाई पड़ता है। चिंताग्रस्त हो उसकी सारी कांति क्षीण हो जाती है, उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है, इसलिए मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। मन में संतोष ही नहीं, व्यग्रता है, इसलिए कि धर्म का संपादन नहीं करते, तो धर्म हमारे मन को शांत करता है, इसलिए धर्म का संपादन करते हैं, मोह छोड़ देना चाहिए, विवेक करो। जब धर्म की बात आवे तो विवेक को साथ रखो, नहीं करना है अभी, कल का क्या पता, दान करने की बात आवे अभी कर दो, पांच मिनट के अंदर मन बदल जाएगा, है ना, पांच मिनट नहीं लगता। मोह बड़ा तगड़ा है, लोभ बड़ा तगड़ा है, जैसे मैंने कल कहा ना कि लगता है ये तो जाएंगे नहीं, इन्हीं के साथ रहना होगा, मोह के साथ, लोभ के साथ, काम के साथ, क्रोध के साथ, अभिमान के साथ, ये कहां जाएंगे, ये तो परिवार के लोग हो गए जैसे, ऐसा नहीं है। धर्म में प्रकाश है और ये अंधकार में होते हैं, ये ज्ञान से होते हैं, जितना ज्यादा अज्ञान उतने ज्यादा अहंकार, जितने ज्यादा अज्ञान उतने ज्यादा लोभ, उतने ज्यादा मोह। धर्म हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है, और वैराग्य हमें शक्तिशाली बता, अरे सब छूट जाएगा क्या फर्क पड़ता है, चलो लेना चाहो देते जाओ, मिलेगा ना देते जाओ, देने से मिलता है। अच्छी बात कहो, अच्छा बोलो, दो। धर्म कहता है दूसरे को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, देते हो पैसा मत दो, कपड़ा मत दो, जमीन मत दो, भोजन मत दो, जिससे तुम पवित्र होते हो। निराभिमानी होने की कोई दवा नहीं है। चार नंबर पांच नंबर मिलेगी, दूध नाके में मिलेगी, 25 सेक्शन में मिलेगी, कहीं मिलेगी? कहीं कोई दवा आपने सुनी है कि खा ले हम निराभिमानी हो जाए? है? जब तक निराभिमानी नहीं होगे, अभिमान जब तक है तब तक मुक्ति नहीं, अभिमान ही बांधता है। जहां अभिमान कम हो वहां जरूर जाओ। जितने देर तक अभिमान निराभिमानी बने रहोगे उतने देर तक आनंद का अनुभव करोगे। आनंद वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, स्थान में नहीं है, जलवायु में नहीं, यहां तक कि आनंद तो तुमको अपने शरीर में भी नहीं है। आनंद तो अपना आपका अपना स्वरूप है। आनंदात एव खलु इमानि जायन्ते, आनंद से आपकी उत्पत्ति है। चलो आनंद से उत्पत्ति नहीं तो ईश्वर की सारी सृष्टि है, तो ईश्वर में कहां दुख है? ईश्वर को दुखी देखा आपने? रोते हुए देखा? अभावग्रस्त देखा आपने? जब सारी सृष्टि ईश्वर की बनी हुई है, ईशा वाश विदम सर्वम, श्रुति भी कहती है ये जो कुछ भी है सब ईशा ईश्वर से ही है। इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा सब ईश्वर ही है, ईश्वर अतिरिक्त नहीं है। नाम रूप सब झूठे। सुनार के पास जाओ तो वो केवल सोना देखता है, वो अंगूठी नहीं देखता, हार नहीं देखता, पायल नहीं देखता, चेन नहीं देखता। क्या देखता है वो? सुनार के पास ले जाओ बेचने के लिए गहना, तो क्या करेगा? सोना देखेगा ना, उसकी दृष्टि में सेवना है केवल। सुनार की दृष्टि कर लो भाई, सुनार की दृष्टि कर लेंगे तब भी आप देखेंगे कि सबको ईश्वर करता ही, तो फिर तुम्हारा है ही नहीं, काय करो ना, सब ईश्वर का है। ये जो आपने अपनी सृष्टि बना ली ना, यही दुखदाई है। ईश्वर की सृष्टि दुख नहीं देती है। ये मैं मेरा जो है यही दुख देता है। ये मेरा है तो मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा है तो मेरे अनुसार नहीं चलता, ये मेरा है तो कोई हाथ ना लगावे, मर जाए तो उठा ले जाओ, लेकिन अभी ईंटे को हाथ मत लगाओ। क्या बात है।
0: श्रोताओं, अभी आप महाराज शिवेंद्रपुरी जी से जीवन का सही ज्ञान समझ रहे थे। महाराज जी हमेशा हमें कुछ नया बता जाते हैं, कुछ ऐसा जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज भी हमने जीवन के एक ऐसे ही अध्याय को जाना। आइए आगे बढ़ते हैं माँ के एक और भजन के साथ, और अपनी नवरात्रि को और भी शुभ और भी उल्लास से भरते हैं। सुनते रहिए आराधना रेडियो ब्रजवाणी पर।

तो भक्तजनों, ये थी आज की आराधना। कल एक बार फिर से आराधना के एक नए सफर में कुछ नए भक्ति गीतों के साथ हम और आप मिलकर प्रभु की यात्रा पर साथ चलेंगे और प्रभु से आशीर्वाद तो लेंगे ही, साथ ही जीवन के सही पथ का मार्गदर्शन भी हम प्रभु से करने का निवेदन करेंगे। माँ दुर्गा आपके समस्त कष्टों का निवारण कर आपको जीवन की सही राह दिखाएं, आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को दूर करें और दुष्टों का संहार करें। इसी मंगल कामना के साथ जय माँ दुर्गे।

0: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। ओए होए ब्रिस्बेन वालों, क्या हाल चाल है आपके। वैसे देखिए मंडे तो आ ही गया है और मुझे पता है कि कुछ लोगों का ना अलार्म बजने से पहले ही दिमाग में ना एक ही थॉट चल रहा होगा कि ओ नो मंडे अगेन। लेकिन जरा रुकिए, पहले मैं सादर प्रणाम तो कर लूँ। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जी। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन को जाने के सफर प्रोग्राम में। आज मंडे को भी बोरिंग बनाने की जिम्मेदारी हम किसी को नहीं देंगे दोस्तों, ना ट्रैफिक को, ना ऑफिस को और ना ही उस बॉस को जो मंडे मॉर्निंग ना सबसे पहले मीटिंग शेड्यूल कर देते हैं। सो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑस्ट्रेलिया, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ड्राइविंग टू वर्क, गेटिंग चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट और सिंपली भाई एंजॉय अ पीसफुल मॉर्निंग विद अ कप ऑफ चाय। मैं हूं आपकी दोस्त। आज सुबह एक छोटा सा सवाल है भाई, अगर आपको अपनी लाइफ में एक चीज दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो वो क्या होगा भाई? अपना करियर या फिर कोई पुराना सपना, फिटनेस जर्नी या फिर किसी अपने के साथ भाई बिताया हुआ वक्त? सोच के जरूर बताइएगा। तो आइए जी मंडे की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।
1: मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रचित, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रचित, सिर्फ एक बार।

0: वेलकम बैक टू रेडियो ब्रसवानी में। वैसे दोस्तों, कभी कभी ना लाइफ में हमें किसी बड़े चेंज की नहीं, बस एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत होती है। और वैसे भी दोस्तों, मंडे सिर्फ वर्किंग वीक का पहला दिन नहीं होता है, ये एक रिमाइंडर है कि आपको अपनी कहानी का अगला चैप्टर लिखने का एक और मौका मिला है। तो स्माइल कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए और अपनी फेवरेट कॉफी या चाय उठाइए और वॉल्यूम जी हमेशा की तरह थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बिकॉज योर मंडे मॉर्निंग डिजर्व्स अ लिटिल म्यूजिक, अ लिटिल लाफ्टर एंड अ होल लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सो दोस्तों, पॉजिटिविटी के साथ साथ ना, चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जो सुबह सुबह मूड को एकदम फ्रेश कर दे। आइए सुनते हैं ये ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रसवानी।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, ये जूता। लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्वानी में। म्यूजिक के बाद अब वक्त है कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स का, क्योंकि रेडियो प्रिस्वानी पर ना एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मिलती है अपने शहर और ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी बातें। ब्रिस्बेन के रेडियो लिसनर्स के लिए भाई एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि लेटेस्ट अवेलेबल रेडियो रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिस्बेन के ब्रेकफास्ट रेडियो मार्केट में काफी कंपटीशन देखने को मिला है। रिपोर्ट में ट्रिपल एम ने ब्रेकफास्ट रेटिंग में अपनी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव की है, जबकि अलग अलग स्टेशन की ऑडियंस शेयर्स में चेंजेस रिकॉर्ड हुए हैं। रेडियो इंडस्ट्री में ये कंपटीशन दिखाता है कि लिसनर्स के लिए दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट है, एंटरटेनिंग प्रेजेंटर्स है और लोकल कनेक्शन है कितने इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिसनर्स से भी एक सवाल है भाई, आपको मॉर्निंग रेडियो में क्या सबसे ज्यादा पसंद है भाई, बताइए। म्यूजिक, न्यूज, फनी कन्वर्सेशंस या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज, सोचिए मत, हमें जल्दी बताइए ताकि मुझे भी पता लगे भाई। आइए फिर सक्सेस सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
1: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्मानी में आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन को। तो आइए इसी के साथ ब्रिस्बेन ट्रैफिक एंड सिटी अपडेट्स जानते हैं। मंडे मॉर्निंग है तो घर से निकलने से पहले भाई अपना ट्रैवल प्लान जरूर चेक कर लीजिएगा। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने वाल्टर टायर जो है ब्रिज के ओवरनाइट क्लोजर्स से रिलेटेड अपडेट पब्लिश किया था। कल्चरल सेंटर रिवर वॉक के एक सेक्शन पर भी अक्टूबर में वीक डेज के दौरान जो है मेंटेनेंस वर्क के चलते टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस शेड्यूल की गई है। अगर आप इन एरियाज के आसपास ट्रैवल करते हैं तो निकलने से पहले करंट ट्रैफिक और फिर जो क्लोजर इन्फॉर्मेशन है वो जरूर चेक कर ले, क्योंकि वही बेटर रहेगा। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, क्रिकेट फैंस के लिए भी वही एक एक्साइटिंग अपडेट मेरे पास है, तो आइए सुनते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज में अपना जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो जारी रखा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो जॉर्जिया वॉल ने क्विक सेंचुरी स्कोर की और ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए ये एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही है भाई। वैसे क्रिकेट हो या फिर कोई और स्पोर्ट दोस्तों, जब अपनी टीम अच्छा परफॉर्म करती है ना तो सुबह सुबह मूड ही अलग हो जाता है। लेकिन अब बताइए भाई, आपकी फेवरेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मेमोरी कौन सी है? आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की ओर। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी मेरे ब्रिस्बेन वालों, रेज है ना आज के फिल्मी तड़के के लिए। चाय रेडी रखिए, कॉफी रेडी रखिए, तो भाई गॉसिप नहीं, पहले एंटरटेनमेंट की दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स जान लेते हैं। मुंबई में नवरात्रि से पहले अंबानी फैमिली के देवी शक्ति सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, संडे यानी कि पिछले कल से नवरात्रों का त्योहार जो है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पर नौ देवियों की पूजा धूमधाम से की जाती है। और इसी के साथ दोस्तों, अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो रणवीर सिंह, आमिर खान, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन, अदिति राव, हैदरी और संजय दत्त जैसे सेलिब्रिटीज इस इवेंट में शामिल हुए हैं। ट्रेडिशनल आर्ट्स, फैशन और फेस्टिव एटमोसफियर से जुड़ी इस सेलिब्रेशन की पिक्चर्स और वीडियोस ने भाई सोशल मीडिया पर ना अटेंशन अट्रैक्ट की है। अब एक बात बताए दोस्तों, आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ट्रेडिशनल इंडियन लुक जो है ज्यादा पसंद है या फिर वेस्टर्न आउटफिट? वैसे मैं एक बात बताऊं, वेस्टर्न आउटफिट से ज्यादा भाई जो सेलिब्रिटीज है ना, वो ट्रेडिशनल इंडियन लुक में कुछ अलग ही नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन फेस्टिव आउट्स की बात ही कुछ और होती है, स्पेशली जब बात आती है साड़ीज, लहंगास और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की। क्यों भाई, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हां जी, ब्रिस्बेन में लाइव म्यूजिक लवर्स के लिए अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो भी इंटरेस्टिंग है भाई। 20 अक्टूबर को ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर में हांस जिमर जो है उनका था नेक्स्ट लेवल टूर शेड्यूल्ड है भाई। उनका म्यूजिक जो इंटरस्टेलर और ब्लेड रनर जैसे फिल्म्स के फैंस के लिए खास अट्रैक्शन हो सकता है। सो ब्रिस्बेन के म्यूजिक लवर्स, अगर आप लाइव परफॉर्मेंसेस एंजॉय करते हैं तो अक्टूबर के अपकमिंग इवेंट्स पर नजर जरूर रखेगा। इसी के साथ आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी। भाई अब थोड़ी सी बात हो जाए आपकी और हमारी। जी हाँ, सुबह का वक्त बहुत स्पेशल होता है दोस्तों। कुछ लोगों के लिए ये पीस का टाइम है, कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रेस है, और कुछ लोग तो भाई आंख खुलते ही अपने फोन पर नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है आपको हंसी आ रही है, वैसे हम भी एक है भाई। लेकिन आज एक छोटा सा भी चैलेंज है। उठने के बाद पहले 10 मिनट्स जो है अपने आप को जरूर दीजिएगा। फोन को साइड में रखिए, 2 मिनट शांति से बैठिए, एक ग्लास पानी पीजिए और अपने दिन के लिए भाई एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट कीजिए। आज खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रिस्पॉन्स को बेहतर बना सकता हूँ या फिर सकती हूँ। और हाँ, मंडे मॉर्निंग का एक फनी सवाल आप सभी के लिए। आप ऑफिस या फिर काम पर जब पहुंचते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? चाय या कॉफी ढूंढते हैं? कलीग से भाई वीकेंड की स्टोरीज शेयर करते हैं या सुनते हैं? फिर कंप्यूटर ऑन करके ईमेल्स देखते हैं? दिल में कहते हैं फ्राइडे कितनी दूर है, कब आएगा वीकेंड, है ना? मुझे लगता है कि डी वाले लिसनर्स की कमी जो है वो ना बिल्कुल नहीं होने वाली। लेकिन सच ये है कि अगर हम हर मंडे को सिर्फ फ्राइडे का इंतजार करते हुए निकाल देंगे ना, तो हफ्ते के 5 दिन जीना ही भूल जाएंगे। अरे भाई, वो गाना तो सुना है ना, जीने के हैं 4 दिन। जी हाँ, इसे भी वैसे 5 दिन है, मंडे टू फ्राइडे। अच्छे से जिए भाई, इंजॉय कीजिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, किसी अपने को फोन कीजिए या फिर किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर दीजिए जिसे उसकी खास जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है ना? सही कह रही हूँ। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक, नहीं तो आप बोलेंगे चांदनी छुपी नहीं हो रही है। आइए सुनते हैं।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्मानी में। वैसे देखिए जी, टाइम की ओर जब हम देखते हैं तो फिर सोचती हूँ मैं कि कितनी बातें और रह गई थी, लेकिन जी टाइम हो चुका है। इसी के साथ ब्रिस्बेन हम पहुंच गए हैं आज के शो के आखिरी कुछ मिनट्स में। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मंडे मॉर्निंग विद मी ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। आज हमें भाई बहुत सारी हमने बात की है, लाइक न्यूज़ की, बॉलीवुड की, म्यूजिक की, दोस्ती की और छोटे छोटे स्टेप्स की जी, जो हमें अपने सपनों के करीब ले जाता है। जानने से पहले भाई ये जरूर जानना जरूरी है, बहुत बातें जानने से पहले, कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जब वो गोल सेट होता है ना, फिर बस कुछ भी हम कर सकते हैं। आपका दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उसमें कुछ ऐसे जरूरी चीजें होनी चाहिए जो आपको मुस्कुराने की वजह दे दे भाई, है ना। तो चलिए जी, इसी के साथ मुझे दीजिए अब इजाजत। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। और इंजॉय कीजिए और भी प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिए, सेफ ड्राइव जो है वो कीजिए, और याद रखिए आपकी स्माइल किसी और के दिन को भी रोशन कर सकती है, लेकिन खुद भी स्माइल जरूर कीजिएगा। सो हैव अ ब्यूटीफुल मंडे ब्रिस्बेन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप द म्यूजिक अलाइव। सी यू अगेन सम टाइम, सेम स्टेशन, रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701। हमारे सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय। जिबूती में बड़ा हादसा, नाव पलटने से बच्चों समेत 109 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश जिबूती में एक बड़ा नाव हादसा हुआ। यहां नाव पलटने से 15 बच्चों समेत 109 प्रवासियों की मौत हो गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जिबूती से यमन जा रही एक नाव के पलटने से कम 109 प्रवासियों की मौत हो गई है और 116 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस नाव में लगभग 350 लोग सवार थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में लगी इमरजेंसी, इमरान खान की पार्टी की प्रांतीय सरकार बर्खास्त। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के प्रांत खैबर पख्तूनवा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते आतंकी हमलों का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। म्यांमार से भारत लाई जा रही 43 करोड़ की ड्रग्स जब्त। ट्रक के फ्यूल टैंकर में छिपाई गई थी नशीली गोलियां। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने असम के गुवाहाटी में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 43 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप जब्त की है। ये खेप म्यांमार से भारत के अन्य हिस्सों में भेजी जा रही थी। इस मामले में मणिपुर के दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वो हमें F-35 जेट्स के पास भी नहीं जाने देते, अमेरिकी कमांडर के सामने वायुसेना प्रमुख ने की बात। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अमेरिका के अत्याधुनिक पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 कार्यक्रम पर चुटकी ली है। उन्होंने अमेरिकी प्रशांत वायुसेना के कमांडर जनरल केविन शाइनर की मौजूदगी में खुलकर कहा कि अमेरिकी अधिकारी भारतीय दल को इस विमान के पास तक नहीं जाने देते हैं। अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, सूर्य कुमार यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने T20 करियर में 2000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक से पहले 5 बैटर्स ये कारनामा कर चुके हैं, जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. Subah ka safar, aapke hum safar, Jatish aur Amita.
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी पर. बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल टू ऑल आवर लिसनर्स एंड टू यू एमी.
2: बोला एवरीवन, गुड मॉर्निंग.
1: छोटा सा शब्द बोला, कितना सुंदर ना. बोला बोला बोला आई मीन बोला एवरीबॉडी. और we should say it every morning so people is sticking in their mind. ठीक है.
2: Yes.
1: Yeah. Fijians जो है हमारे आदिवासी जो ये लोग बड़े प्यार से बोलते हैं. Hey, bula, bula, brother. Okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों. By now you know we are okay. The way we going on.
2: Yep.
1: बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है दोस्तों इस दुनिया में, लेकिन क्या करेंगे, अब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. और अगर इफ यू लुक एट द गुड साइड, द लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, डोंट यू थिंक सो?
2: ऑफ कोर्स,
1: इफ यू बैलेंस देम.
2: या दिस गुड एंड बैड,
1: व्हिच वे विल द बैलेंस टिप?
2: ओह, दैट्स अ टफ वन.
1: टफ वन. ओके, वेल वी लीव इट देयर. पैसिफिक मोटरवे 8 माइल प्लेन हैजर्ड, वहां पर नॉर्थ बाउंड जो था ये क्लियर हो गया दोस्तों. और अपर माउंट ग्रेवेट मल्टी व्हीकल क्रैश, यहाँ पर लेन और लेन्स रिड्यूस नॉर्थ बाउंड टूवर्स हॉलन पार्क. ठीक है. और वेदर के लिए कहा गया है कि आज पार्टली क्लाउडी रहेगा, 19 and 31, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. लेकिन अभी सुबह सुबह एक दो फुहारे पड़े हैं मुझे, आई कुड फील इट ओवर ऑन माय हेड.
2: Really?
1: Yeah. Tomorrow showers, storm developing, 20 and 32, 15 millimeters possible. Okay, 1 to 15. Or Wednesday could be possible early storm showers, 20 to 26. Or Thursday could possible showers कहा गया है, 17 and 24 रहेगा, 1 millimeter तक. Friday को shower or 2, 16 and 21 up to 9 millimeters. Saturday को shower 16 and 22 up to 10 millimeters. Or Sunday को भी showers है, 16 to 23. 10 millimeters. All right. So that's it. और देखते हैं न्यूज में, फिजी और ऑस्ट्रेलिया न्यूज में. फिजी में स्कूल्स एंड हॉस्पिटल क्लिनिक्स क्लोज टूडे. फिजी स्कूल्स विल री ओपन ऑन ट्यूजडे 13 October. स्पेशलिस्ट आउट पेशेंट क्लिनिक्स एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो क्लोज टूडे. अफेक्टेड पेशेंट्स शुड कॉन्टेक्ट दे referring health center or healthcare provider to arrange another appointment. What is going on here? Why are they closed?
2: I don't know. I was going to ask you after you just finished reading it.
1: Oh, I don't know what they're closing it for. Anyway, the Vuni dry spell is now affecting employment. Oora State says 26 workers have been sent home and operations have stopped because of falling water supplies. Management warned on 11th October that the state could run out of water within 2 weeks without substantial rain. Dalo, Yongona and coconut production is also being affected. High Court orders cocaine exhibits retested. The Suva High Court has directed the state to retest and verify the weight of 18 kilograms of cocaine collected with the 2014 importation case. Police told the court the exhibits remain in custody. The matter returns on 23rd October. I hope nobody swipes them away. Australia prepares new online safety legislation. Labour is expected to introduce its proposed digital duty of care this week. It would require social media platforms, search engines and AI services to take responsible steps against foreseeable online harm. The Greens want stronger fines and a right for Australians to seek compensation. The coalition remains opposed. The bill is not yet become law. Okay, Brisbane and Southeast Queensland weather. Brisbane is forecast to reach around 31 degrees today. Thunderstorms may develop from... It was hot yesterday.
2: Mm-hmm.
1: Thunderstorms may develop from Tuesday with possible heavy rain and hail, particularly towards the Gold Coast, Granite Belt and New South Wales border. Brisbane could also experience severe storm activity, so listeners should follow current bureau warnings, okay? So follow that. Okay, that's about it.
2: That's about it. Yes. Okay, how about we have a song?
1: All right.
2: And then we get cracking.
1: All right.
2: All right, here we go.
3: પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Rewa, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhul sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांद्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

हम हैं यहां पर दोस्तों, आ गए हम। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं रेडियो पर दोस्तों, हम भी बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हमारे पास शायद उतना नॉलेज ना हो, और हम चाहेंगे हम बात को आगे लाते हैं और शायद हो सकता है कि इस पर आप कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं। मोस्ट आई मीन ग्लेडली विल अलाउ यू इन। ठीक है, आइए अपना विचार दे और आप क्या सोचते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, आपको याद रहे इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ आप रहेंगे और फिर 11 बजे आप हो जाएंगे संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम, और फिर 3 बजे से आप हो जाएंगे निविया के साथ, तो जरूर सुनिएगा। ओके,
1: व्हाट
0: आर यू प्लेइंग?
1: ओह, वी जस्ट इनटू म्यूजिक टुडे।
0: नो, ये आई मीन
1: व्हाई। ओके, here we go.

0: डपली वाले डपली बजा। अभी आपने सुना दोस्तों रेडियो बिजवानी से, बड़ा प्यारा सा गीत था, कुछ गाना में चेंजेस हुआ है। खैर,
1: दैट्स जस्ट अ बिट ऑफ अ रीमिक्स.
0: ओके, नाउ आई वांट टू प्ले वन सॉन्ग। ओके, डोंट वरी, यू लाइक इट, आई थिंक यू लाइक इट।

0: जी हाँ दोस्तों, चलिए हमारे साथ पंडित सुरेश जी है। पंडित सुरेश, आपका स्वागत है रेडियो बिजवानी पर।
1: जतीश
0: नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आपको भी सुनने वालों को भी नमस्कार। तो आप कुछ जटिल जटिल प्रश्न उठाते हैं रेडियो के द्वारा, तो
0: जी, ये
1: कभी
0: मेरा
1: कभी
0: काम है।
1: कि जी हाँ, अच्छा ये है, लोगों को कुछ जानकारी मिलता है ना कि क्या दुनिया में और हो रहा है।
0: सही बात।
1: तो जैसे आप कहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं अपने आगे पीछे वाली बात जानते हैं, तो कुछ कुछ जानते लोग बोलते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं देखो कभी कभी वो अपने आप हंसते हैं, रोते हैं और लगता है कि वो अपने आप में बात कर रहे हैं ना। तो भगवान ने उस तरह बनाया है कि उनको जब वो बच्चे होते हैं जब तक उनको और अपने आप इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होते हैं तब तक वो भगवान से उनको मिलता है ना, उनका जो लेना देना है भगवान से जुड़ा हो रहता है। जैसे वो बड़े होते हैं चलने फिरने लगते हैं बात करने लगते हैं तो वो इंडिपेंडेंट भगवान उनको छोड़ देते हैं। तो से तभी शायद होता है कि हम लोग उतना उम्र तक हमें पता होता है, और अभी भी हम बड़े हो जाते हैं तो कभी जो हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट ना, कभी
0: जी
1: कभी एक व्यक्ति दूसरे को देखता है तो जैसे एक शेर है एक बकरी खड़ा ना, तो वो हम पिछले जन्म के कुछ लेना देना होगा कि शायद एक हम शेर होंगे आप बकरी होंगे तो एक दूसरे से डरते होंगे ना, या नजदीक नहीं आएंगे। इसी तरह
0: ये तो
1: से
0: थीरीज बहुत लगा सकते हैं पंडित जी, बात तो सही
1: जी
0: है। हाँ,
1: हाँ, ये तो हम लोग
0: कोई
1: बस
0: कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है
1: हाँ
0: जिसे। हाँ
1: नहीं, हम लोग जो शास्त्रों में कभी कभी ना स्टोरी आता है, जैसे गीता में भी आता है कि कृष्ण भगवान जो गीता को कर दिए, जो उनका ट्रांसलेशन कुछ लोग किए, तो ऐसे ऐसे उसमें कहानियां जोड़े हुए हैं कि पिछले जन्म का कुछ करनी होता वही हमारे लिए आगे को बढ़ाता है ना। तो वो भी है कि अगर हम उसी को लेकर चले, अगर हम कुछ ना करें तो हम नीचे ही जाएंगे ना, ऊपर को नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से है, और सभी के लिए सूचना हम दे रहे हैं, श्री
0: जी
1: सनातन विजय नवरात्रि सभी के घर आंगन में माता की शक्ति बने। पहले जो 3 दिन होते हैं माता दुर्गा का पूजा होता है, दूसरे 3 दिन होते हैं मतलब 4 to 6 6th day तक वो माता लक्ष्मी का पूजा होता है, और आखिरी जो 7 8 9 है वो माता सरस्वती की पूजा होती है। जतीश जी, तो ये हम सनातन धर्म
0: तो
1: सेंटर पर 15 तारीख से लेकर 19 यानी 5 days का प्रोग्राम रखे हुए हैं, और ये प्रोग्राम इप्स्विच मंडली के द्वारा और हमारे द्वारा और अनेन हमारे एक प्रचारक हैं, हम लोग आकर अभी सभी को निमंत्रण है आए देखें कि माता की पूजा और उनकी जो बखान है, और देखें भोजन प्रसाद की प्रबंध होगा, इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, आप आए कुछ दान करें। और ये भी सुनना है कि सनातन धर्म को भी इमिडिएटली हम लोग को लगभग हाफ मिलियन पैसे की काम है, वो जो कि 5 26 जून 27 जून से पहले हम लोग को ये पैसा बटोर लेना है, क्योंकि हमारा कापाक ओवर 400,000 का एक ही प्रोजेक्ट है ना। तो अभी हम लोग कर्जे से मुक्त हो गए हैं और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग और कर्जे लें, कि इंटरेस्ट भरना होता है, इंटरेस्ट भी हाई होते ही चला जा रहा है।
0: जी बिल्कुल सही है।
1: तो हम लोगों से निवेदन करते हैं सनातन के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के हैसियत से और पुरोहित के हैसियत से आप सभी को हम सम्मानित करेंगे, कुछ न कुछ आकर हवन यज्ञ में भाग लें।

0: वहां पर दान करें और सनातन धर्म का जो ये 5 दिन का प्रोग्राम है इसमें जरूर आए। और जैसे हमने कहा कि माता दुर्गा शक्ति देने वाली, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता बल विद्या बुद्धि देने वाली, तो आएंगे, भाग लेंगे तो सभी के परिवार में, घर आंगन में कुछ न कुछ जरूर माता प्रगति उन्नति और रक्षा करने वाली है। तो सभी के लिए निमंत्रण है 15 से लेकर 19 तक। जतीश जी,
1: ओके जी, थैंक यू वेरी मच जो नोटिस लाए हैं आप, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
0: जी धन्यवाद। और दूसरी है कि दीपावली 24th को, वैसे ही सनातन धर्म पे 24th को दीपावली महोत्सव के निमित्त एक प्रोग्राम है, वो भी रेडियो में एड साइड बन गया होगा, तो आप उसको फॉलो कर लेना।
1: क्या बात है जी, अच्छा, थैंक यू जी, धन्यवाद।
0: अच्छा, सभी के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं।
1: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी,
0: धन्यवाद।
1: तो चले दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और इस समय टाइम टू गो, ओके, चलो तो अब हम चलते हैं। आई डिडंट लुक एट द टाइम, एनीवे, तो हम यहां से निकलते हैं और कल मिलेंगे, ठीक है?
2: ठीक है, नमस्ते एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल।
1: अभी भी मेरे पास एक फोटो आया, लेकिन शायद इस पर मैं कल कुछ बोलूंगा।
2: ओके।

नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं अच्छे, अगर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एनर्जी से भरा हुआ, गाता गुनगुनाता हुआ इट हैपेंस लेकर सताक्षी आपके लिए हाजिर हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी और बहुत सारे मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जो आपको सुनवाऊंगी। लेकिन ये सब सुनने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो भाई जिन्होंने अभी तक रेडियो सेट्स नहीं खोले और वो दूसरों के घरों से मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने रेडियो सेट्स भी ऑन कर लीजिए, अपने मोबाइल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स, जहां पर भी आप मुझे सुनते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि आप इट हैपेंस को अपने अपने घरों में अपने साथ एंजॉय कर पाए, है ना। और बहुत खूबसूरत गाने जो है वो आप यहाँ पर सुनने वाले हैं, लेकिन अगर वो दूसरों की विंडोज से आएंगे, आपके कानों में दूर से पड़ेंगे, तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए जल्दी से खुद के घर में भी शुरू कीजिए इट हैपेंस, और आज के गानों को गुनगुनाना भी तो है, तो जल्दी आप अपने कामों को फिनिश करते चलिए, ताकि दिन जो है वो अच्छा बीते, खूबसूरत बीते, मिसमैनेजमेंट ना फैलने पाए, है ना। क्योंकि एक बार रूटीन अगर बिगड़ा तो फिर पूरे दिन का रूटीन चेंज हो जाता है, तो ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखिए। आप काम करते रहिए, मैं आपको इंगेज रखूंगी अच्छे अच्छे गानों के साथ भी, आपको एंटरटेन करती रहूंगी, और बातें तो होती है लाजवाब हमारी। तो चलिए, देर किस बात की है, इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM, आप सताक्षी के साथ, और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: कुड़ी नशे से चढ़ गई।
1: गुड मॉर्निंग अजी, एक बार फिर से आपको रेडियो प्रसारणी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। वेल, बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, गाने भी होंगे, बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन हाँ हाँ, आज का दिन जिनके लिए खास है उन्हें हम कैसे भूल जाए। तो आपका है हैप्पी बर्थडे, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड वी विश कि आप जिंदगी की हर खुशी पाएं, हर पल गाते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए बिताएं। जिनकी आज है शादी की सालगिरह, उनके लिए तो दिन और भी खास है। आपको पता है, मेरे हिसाब से जब आपकी शादी होती है ना, तो आपका नया जन्म होता है। सब कुछ जिंदगी में नया होता है, आप जिंदगी की एक नई समझ रखना शुरू करते हैं, एक नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं जो उस दिन के पहले आपने शायद पहले कभी नहीं किया होता है, राइट? सो मेरे लिए बहुत ऐसा वाला होता है कि यार ये नया जन्म है इंसान का। तो आपका भी आज नया जन्म हुआ था, तो हैप्पी बर्थडे भी हुआ आपका। वेल, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा और इस जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामे यूं ही साथ साथ चलते रहिएगा। और जिनके लिए भी स्पेशल है, खास है आज का दिन, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत सारी विशेज हैं हमारी कि आप सबका दिन, आप सबका सबका सबका दिन आज बहुत खूबसूरत जाए। चलिए इसी विश के साथ शुरुआत करते हैं इट हैपेंस के इस अगले गीत की। हाँ, इसे एंजॉय कीजिए और लौट कर आइए, फिर बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी 1701 AM, क्योंकि आप है सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM, आप हैं सदाक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। देखिए जी, ऐसा है कि जिंदगी में बहुत सारे जायके हैं, है ना, खट्टे मीठे तीखे, जिस फ्लेवर का खाना आप खाना चाहें वैसा ही खा सकते हैं। लेकिन इन जायकों का असली मजा जो है वो लोगों के साथ है, और ये लोग भी कुछ जायके की तरह ही होते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मसालेदार खाने की तरह होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। पिज्जा, बर्गर, इनका जो है खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, इनको एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। जिंदगी में सुकून या आपकी हेल्थ को अगर कोई चीज दुरुस्त रखती है तो वो आपके घर का खाना है। दाल चावल रोटी सब्जी वो खाना है जिससे आपकी हेल्थ भी दुरुस्त रहती है और खाने के बाद आप हल्का लाइट फील करते हैं, आपको सुकून मिलता है। कुछ ऐसे ही लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग जिनके साथ हम लाइफ को एंजॉय करते हैं ऐसे लोग होते हैं, और कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में सिर्फ होना ही हमें सुकून देता है। उनका हमारे आसपास रहना ही हमें ये फील कराता है कि हम प्रोटेक्ट हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है हमें बताइए रेडियो प्रस्थानी के हमारे फेसबुक पेज पर, और चलिए अभी इस अगले ट्रैक को एंजॉय कीजिए मेरे साथ।

बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेलापन फील करते हैं। आपने भी कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि लाइफ में, जिंदगी में वो अकेले हैं, तन्हा है। देखिए, ये अकेलापन जो है ये बुरी चीज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद से दोस्ती कर पाते हैं। कोई भी इंसान अकेला कब होता है? जब वो खुद के साथ होता है। तो डेट मीन्स अगर आप अकेले हैं तो आप अपने साथ हैं, और अपने साथ आप तब खुश रह सकते हैं जब आपका खुद के साथ एक रिश्ता हो। अगर आपका खुद के साथ एक रिश्ता ही नहीं है, आप खुद को समझते ही नहीं है, खुद को जानते ही नहीं है, आप खुद की पसंद नापसंद को इग्नोर करते चले आ रहे हैं, तो आपका वो रिश्ता खुद के साथ कायम नहीं होगा, और यही अकेलापन आपको काटने को दौड़ेगा, और फिर आप भागेंगे भीड़ की ओर जहां लोग आपको समझें, आप ऐसी उम्मीद करेंगे। और जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता, किसी और के साथ कैसे खुश रहेगा? जब आप खुद को ही नहीं समझ पाए तो लोगों से ये उम्मीद ही क्यों कि वो आपको समझेंगे। बहुत ही गहरी बात है, सोचिएगा। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी पर, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, और आइए आगे बढ़ती हूँ इस अगले ट्रैक के साथ।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: वेलकम बैक, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, आप सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। दोस्तों, बहुत सारी बातें हम और आप आगे करेंगे, लेकिन गानों का सिलसिला जो है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए इट हैपेंस में आगे बढ़ते हैं गानों की हैट्रिक के साथ, और ये पहला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

गाना की हैट्रिक इस वक्त आप सुन रहे हैं दोस्तों सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 107.1 AM पर। तीन बैक टू बैक ट्रैक्स जो आज के दिन को खूबसूरत कर रहे हैं क्योंकि इन गानों को आप गुनगुना रहे हैं, वो भी सताक्षी के बिना आपको डिस्टर्ब किए। तो चलिए इस अगले ट्रैक को भी जल्दी से सुनवाऊंगी और कब बोलूंगी ताकि आप इसे भी इंजॉय करें। सुनते रहिए सताक्षी के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी पर।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी पर गानों की हैट्रिक। जी हाँ, यही सेगमेंट हमारा इट हैपेंस में इस वक्त चल रहा है, जहाँ तीन बैक टू बैक ट्रैक्स आप सुनते हैं। दो गाने हम ऑलरेडी सुन चुके हैं और तीसरा गाना जो है वो आपको, अगर आपने अभी तक इसे नहीं गाया है, मतलब अभी तक के गानों को नहीं गाया है, तो इसे आप जरूर गुनगुनाने वाले हैं। कौन सा ट्रैक है जरा सुनिए। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
5: अरे ओ खिलाड़ी, आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी.
6: ओके,

अपने काम को कर रहे होते हैं, अगर हमें पता हो कि ऑफिस में कैमरा लगा है तो हम एक भी टाइम, एक भी मिनट जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं। दुनिया या आपका सीसीटीवी आपको किस नजर से देखता है ये कभी मायने नहीं करता है, लेकिन वो ऊपर वाला ना, वो आपको किस नजर से देख रहा है ये जरूर मायने रखता है। इसलिए काम वो कीजिए जो उसके कैमरे में कैद होने के बाद परफेक्ट हो, या नीचे कैद होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स उसके कैमरे के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि ना तो उसका कैमरा कभी खराब होता है और ना ही बंद होता है, आपकी सारी एक्टिविटीज वहां कैद हो रही है। ठीक है जी, तो वही कहिए जो उसको अच्छा लगता है, जो आपके कैरेक्टर को सूट करता है और जिसको करके आपको सुकून मिलता है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

ये आय हाय, ये गाना जो है ना, ये मतलब एक क्या कहूँ मैं, बड़ी प्यारी वर्डिंग्स है इस गाने की, जिंदगी से जुड़ी हुई। और सबसे खूबसूरत बात ये कि इस गाने में आवाज किशोर दा की है। तो भाई देखिए, राजेश खन्ना और किशोर दा, बहुत सारी बातें हम इन पर करेंगे यादों के झरोखों में, लेकिन अभी हम इट हैपेंस में हैं, तो जाहिर तौर पे बात जो होने वाली है वो इस गाने से रिलेटेड होने वाली है ना। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं ये मायने नहीं रखता है, मैटर नहीं करता है जिंदगी में। देखिए, आप कितने भी अच्छे बनने चाहें, आप कितना भी अच्छा करना चाहें, आपको सब लोग एक पॉजिटिव नजर से नहीं देख सकते। हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो हम कुछ भी कर लें जिंदगी में, उनको जो सोचना है, उनको जो हमारे बारे में कहना है, या हमारे बारे में जो चीजें वायरल करनी है वो तो करेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आप वो करें जो आपका दिल चाहता है, आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। क्यों हमें इतना फर्क पड़ता है लोगों से? क्यों हम लोगों के डर से घरों में छुप जाना चाहते हैं? क्यों हम अपने कदमों को बढ़ाना नहीं चाहते? लोगों का काम है कहना, और वो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। आप भी तो अपना काम बखूबी कीजिए। जिंदगी में जो पाना है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। और चलिए सुनिए अभी इस अगले गीत को। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बातें शाते होती रहेंगी आगे भी। इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए अभी।